0: आपका तैयार है ना हमारी प्रोग्राम सुनने के लिए? आप सब सुनने वाले को नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान।
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू आई आई या।

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: फिल्म सलवा साल से निकाली हुई आप सुन रहे थे अभी हेमंत कुमार को, संगीतकार एस डी वर्मन, गीतकार मजरू सुल्तान फरीस, आनंद देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म सलवा साल। अक्सर हम अपने कार्यक्रम में आपके लिए पेश करते हैं वन मेलोडी वो सुप्रीम, यानी जब धुन संगीत की जान माना जाता था। अक्सर हम निकालते हैं 1950s, 60s और 70s, कभी कभी 1949 से निकाली हुई इस प्रोग्राम में एक संगीत को हम आपको आपके लिए पेश करेंगे। हम आपको परिचय कराते हैं, आपको ले जाते हैं यादों के सफर में, आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you know or relive your memory with a person on the screen, kalakar, who gave the song, sangeetkar, who wrote it, geetkar, aur film ke naam aur saal ke naam. Ye hai sangeet ki jankar, aapke saath Firoz Khan. Sangeet ki jankar hai station par har ravivar ke subah 10 se lekar 12 baje tak. Main aapke saath ho jata hoon aur aapke liye pesh karta hoon चुने हुए लोकप्रिय संगीत 50s, 60s और 70s से निकाली ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी जाता है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, छोटी ब्रेक के बाद हम आपके लिए पेश करेंगे, आपके लिए जारी रखेंगे। When
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: ये छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हुए आशा करते हैं कि आज का दिन, आज रविवार का दिन, दैट्स 13th of September, आप सबके लिए शुभ हो। और हम इस प्रोग्राम में अक्सर संगीत के जानकार के प्रोग्राम में 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं यादों का सफर, चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई, यानी आप कब सफर कराते हैं डाउन मेमोरी लेन। आपको याद रहे 12:30 बजे से रेडियो 79.1 के टेलीफोन 9 3279 7901 विल बी ओपन फॉर डेडिकेशन, बर्थडे कॉल्स, रिक्वेस्ट, जो भी हो, 3279 7901, रोय सिंह और सुशीला के साथ। तो याद रहे, अगर आप लाइव अपने रिक्वेस्ट पेश करना चाहते हैं 3279 7901 12:30 बजे से। और अब साल 1951, फिल्म बहार, पर्दे पर विजंतीमाला, करण दीवान, तबस्सुम, ओम प्रकाश, प्राण और पद्मनी, फिल्म बहार।

राजबन के आना रे मोहे लेके जाना रे व्हाट अ ड्रीम 1951 की फिल्म बाहर से निकाली हुई भी आप सुन रहे थे। संगीतकार एस डी बर्मन और आवाज शमशाद बेगम। संगीत की जानकार 79 ब्रिजबन पर आप सुन रहे हैं व्हेन मेलेडी वाज सुप्रीम, जिसको जारी रखते हुए साल 1949 दैट्स नीली 70 ईयर्स अगो फिल्म बरसात।

0: 1949, man, that's about 70 years ago. अगर आपको मौका रहे तो आप इस फिल्म, इस क्लिप को देखें, नरगिस के साथ राज कपूर, नरगिस डेड सेट, शी लुक्स लाइक अ हाई स्कूल स्टूडेंट, दैट यंग, 1949, 70 years ago, शंकर जयकिशन के संगीत पर, आवाज लता मंगेशकर और गीतकार, जी हाँ गीतकार हजरत जयपुरी. एक्चुअली हजरत जयपुरी की एक छोटी सी इंटरव्यू मैंने सुन रहा था नॉट लॉन्ग अगो, और जैसे आप जानते हैं इस प्रोग्राम में अक्सर हम आपके लिए पेश करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 50s, 60s और 70s से निकाली हुई, और ऐसे गीत जिसमें धुन संगीत के जान हो, यानी कि वन मेलोडी वॉज सुप्रीम. आई वॉज वेरी कीन एंड वेरी इंटरेस्टेड टू सी वट टू हियर एटलीस्ट वट हजरत जयपुरी सेड अबाउट माई फिलोसफी. उससे पूछा गया कि वाई डू थिंक ऑल दीज 40s, 50s, 60s एंड 70s मेलोडीज एंड सॉन्ग्स आर स्टिल पॉपुलर, एंड ही इज व्हाट ही सेड.
1: भाई साहब ये बात थी कि मेलोडी होती थी, एक दर्द होता था, सिचुएशन के ऊपर होते थे. आजकल गाने सिचुएशन पर होते ही कहाँ हैं. एक गाना चाहिए या ये लिख दो हीरो हीरोइन के पीछे. हमारे यहाँ कहानी होती थी, आजकल के गानों में कोई कहानी नहीं होती, क्योंकि वो लोग म्यूजिक डायरेक्टरों के पास गाने रहते हैं, वो कहते भैया ये रख लो. हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता था. हमारे यहाँ सब बैठते थे, स्टोरी सुनते थे, सिचुएशन निकालते थे, धुने सब अगर बनी हुई है तो सुनते थे कि इसको शूट होगी कि नहीं होगी. उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते और एक एक गाने को एक एक महीना लग जाता था. एक एक काफी भर जाती थी एक गाना लिखने के अंदर. इसलिए वो गाने अमर हैं. पुराने गाने आप कोई भी लीजिए, किसी के भी ले लीजिए, शंकर जयकिशन कहीं, इसके अलावा भी आप नौशाद साहब के ले लीजिए, एस डी बर्मन के ले लीजिए, रोशन जी के ले लीजिए, जितने गाने कल्याण जी आनंद जी के लिए, पुराने गाने जितने भी हैं भैया वो सब दिल को टच करते हैं. आज के गाने जो दिल को टच नहीं करते, इधर आए उधर गए, इधर आए उधर गए. बस ये है कि एक मेरे शेर है, मैंने कहा है नए गानों के लिए भी कि ये आजकल के गाने हैं सेंट नकली नकली. सब लोग कह रहे हैं इतने हिना को लाओ. भैया इतने हिना की बात करो, नकली सेंट की क्या बात करते हो, इसलिए पुराने गाने छाए हुए.
0: छोटी सी वक्त में और छोटी सी शब्दों के साथ हजरत जयपुरी ने हमारा फिलोसफी को समराइज कर दिया. लगता है मौके मौके पर हम इस रिमार्क्स को अपने प्रोग्राम में पेश किया करेंगे. लेकिन एक बार और, आपको याद है फिल्म संगम में ए मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना. एक्चुअली दैट लेटर वॉज written by Hazrat Jaipuri for his lover. Here's what he said about that song.
1: ये तो भाई मेरी मोहब्बत की पहली चिट्ठी थी जो राधा के लिए मैंने लिखी थी. सबसे पहली मेरी चिट्ठी ये आज अमर गाना है, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी.

0: संगीतकार शंकर जैक्शन, फिल्म संगम राज कपूर की फिल्म, राज कपूर रजन कुमार की फिल्म संगम, आवाज मोहम्मद रफी, मोर इम्पोर्टेंटली गीतकार, लिरिक्स बाय हजरत जयपुरी, जिसकी छोटी सी इंटरव्यू आपने सुना भी। आपका साथ फिरोज खान।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।
0: जी हाँ, संगीत की झनकार, संगीत की झनकार स्टेशन पर हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक आपके लिए पेश करते हैं ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी जाता है, ऐसे गीत जिसमें धुन उनकी जान हो, वन मेलोडी वाज सुप्रीम। ऐसे ही गीतों से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। आपका साथ फिरोज खान, आपको याद रहे हर रविवार को संगीत के झंकार 10 से लेकर 12 बजे तक। आपको याद होगा फिल्म भाई भाई, किशोर कुमार और निम्मी पर्दे पर, मदन मोहन के संगीत पर।

संगीतकार मदन मोहन, गीतकार राजेश कृष्ण, फिल्म भाई भाई किशोर कुमार और निमी की फिल्म। यह है संगीत की झनकार। आप सुन रहे हैं आज सुबह का प्रोग्राम व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम। साल 1956 देवानंद और वहीदा रहमान की फिल्म CID, ओपन ईयर, संगीतकार आवाज शमशाद बेगम। ये थी गुरुदत्त की पेशकश। यह है संगीत की झनकार और आप सुन रहे हैं वन मेलोडी वाज सुप्रीम। आवाज शमशाद बेगम, 1956 की फिल्म CID।

ये फिल्म 1956 के फिल्म सीआईडी से निकाली हुई भी आप सुन रहे थे। एक बार फिर साल 1956, फिल्म चोरी चोरी, राज कपूर और नरगिस एक बार फिर शंकर जयकिशन के संगीत पर मुन्ना डे के साथ लता मंगेशकर।

1956 के फिल्म में चोरी चोरी संगीतकार शंकर जयकिशन लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी, ये है संगीत की झनकार 79 ब्रिस्बेन में आपके साथ फिरोज खान। 1961 की फिल्म जंगली, सैरा बानू की पहली फिल्म शम्मी कपूर के साथ

1961 की फिल्म शम्मी कपूर की फिल्म जंगली। दूर पहाड़ों के बादल उलझे उलझे गुलपोश चमन, चुपचाप से तुम गुनमान से हम अरमान मचलने लगते हैं। भूले बिसरे यादों के लिए थोड़ी देर के लिए यादों का सफर पर चलते हैं, ऐसा गीत जिसको हम बार बार बार सुनते हैं। संगीत की जानकार आपके साथ फिरोज खान।

1963 के फिल्म कौन अपना कौन पराया, विजय कुमार और वहीदा रहमान, संगीतकार रवि, गीतकार शकील वैद्यूनी, आवाज मोहम्मद रफी, आपके साथ फिरोज खान इस स्टेशन पर हर रविवार को आपके लिए पेश करते हैं ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी जाता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे गीत जिसमें मेलोडी उनका जान हो, व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम। अब चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं एक फिल्मी धुन के साथ, उसके बाद वापस आकर आपके लिए यादों का सफर को हम जारी रखेंगे। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।

0: एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबको स्वागत करते हैं संगीत के जानकार पर। मैं हूं आपका साथी फिरोज खान और आपका दिन ये रविवार का दिन 30th of September ये 2026 आप सबके लिए शुभ हो। आशा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते हैं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक, जिसमें हम पेश करते हैं आपके लिए चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई, यानी कि आपका सफर कराते हैं यादों का सफर के साथ। आपको याद रहे आपके लिए हम जुमा प्रोग्राम पेश करते हैं हर जुमे के दिन करीबन 9 से लेकर 9:30 बजे तक, उसके बाद मजहबी कव्वालियाँ, और हर रविवार की सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम हजरत मौलाना फजल दाद के साथ आलिमो नेया सवाल और जवाब, और फिर मैं आपके साथ हो जाता हूँ हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक। यह है संगीत की जानकार और मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान। आपको याद रहे 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रेडियो 1701 का टेलीफोन नंबर, टेलीफोन लाइन 3279-1701 विल ऑलवेज बी ओपन एस एवरी संडे फ्रॉम 12:30 to 5 विल रिसीव योर कॉल्स फॉर डेडिकेशन रिक्वेस्ट or birthday calls, wedding anniversary, whatever. We will listen to you because you listen to us. So, Roo and Soe, Roy Singh and Sushila will be here from 12:30 to 5.
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरें।
0: रेडियो 71 ब्रिस्बेन पर यह है संगीत की झनकार और मैं हूं आपके साथी फिरोज खान।
2: यादें जो खुशबू बनकर मन आंगन महकाती हैं, तो कभी कभी यही यादें कांटों की सेज भी बन जाती हैं।
0: दूर पहाड़ों के बादल उलझे उलझे गुल पोश चमन, चुपचाप से तुम गुनमान से हम अरमान मचलने लगते हैं। तो चलो भूले बिसरे यादों के लिए अब हम यादों का सफर पर चलते हैं।

महेंद्र कपूर, यादों का सफर डाउन मेमोरी लेन। और अब चलो अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, हेलो करते हैं, चिरियो भेजते हैं, डेडिकेट करते हैं हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर ऑकलैंड में। 80s में हम मिलकर यहाँ 4EB चलाया करते थे, लेकिन उषा और इमैनुअल हमारे प्रोग्राम के बहुत दिल लगा कर सुनते हैं हर रविवार को। उषा खासतौर पर आपके लिए, और इमैनुअल मैं जानता हूँ आप भी हमारे इस प्रोग्राम को बहुत दिल लगा कर सुनते हैं। आप बहुत खूब से ये गाना गा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम टू ब्रिस्बेन, मेक श्योर यू सिंग दिस अगेन। आपके लिए यादों का सफर।

डाउन मेमोरी लेन। संगीत की झनकार पर चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुरानी फिल्मों से निकाली हुई। अभी आपने सुना स्पेशल डेडिकेशन टू इमैनुएल एंड उषा इन ऑकलैंड। तुम्हारे शरीर मुस्कुराते, तुम्हारे चुलबुले कहके, तुम्हारे मन चले गीतों का शोर, ढोलक की ना खत्म होने वाली आवाज और दूर कहीं पपीहे की पीहू, यही सब है ना यादों का सफर।

0: वक्त लकीरें खींचता है इंसानी चेहरों पर, बीते समय पर वक्त चला जाता है। ये लकीरें ठिठक जाती हैं, छूट जाती हैं, देर तक अपने होने का एहसास जगाती हैं। इन लकीरों पर चंद नई लकीरें उभरती हैं, कुछ पहले से और ज्यादा साफ और अलग। ये अपनी अलग छाप या पहचान या छोड़ जाती हैं यादें।
1: यादों का सफर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
0: यह है संगीत की जानकार और आपके साथ फिरोज खान। यादों का सफर डाउन मेमोरी लेन। अकेले हैं तो थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, सोचिए, गो बैक 30-40 years। इन माई केस विल टेक इट बैक टू 1940s। जोकिंग, शायद आपको 1960s-70s तक ले जाए। फिलहाल दैट बट डजंट मैटर व्हाट द ईयर इज, दिस वॉइस विल ऑलवेज बी forever and ever popular. That's Mahendra Kapoor, I mean.

उसके होंठों पे जब नाम मेरा आया होगा, खुद को रिसवाई से फिर कैसे बचाया होगा। सुन के तो आना था फसाना मेरे बर्बादी का, क्या उसको अपना सितम याद न आया होगा।

प्यार की मीठी मीठी किसक, प्यार की मीठी मीठी किसक, आंखों में पहले पहले प्यार की नमी, सोचों में किसी की खूबसूरत चेहरा और तरोताजा गुलाब के सुर्ख फूल।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
0: यह है संगीत की जानकारी और आपके साथ फिरोज खान।

0: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फिजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
1: दिल दिल से मिला कर देखो,
2: ये है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो,
2: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। We present, you decide. You phone us on 327-9701. We listen to you because you listen.
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
5: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

0: Welcome back to Radio Vizwani. नमस्कार, राम राम, केम छो, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। और बुला कहते हुए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो बिजवानी पर। जहाँ तो साथ स्टूडियो की घड़ी के अनुसार ठीक 12:30 बज चुका है। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा रेडियो बिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, जगह से लेकर 2:30 बजे तक आपका साथ दूंगा। शाम का सफर में जरूर से हमारा साथ दीजिएगा, जुड़ी रहेगा हमारे साथ 2 घंटे का खूबसूरत सा कार्यक्रम में।
1: हर बात का वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती
0: है। और की शाम आप सभी के लिए शुभ और मंगल में हो, ये हमारी कामना है। और अभी से लेकर 2 घंटे तक आपका हमारे साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। याद कीजिएगा आप सभी रेडियो ब्रिजवानी सुन रहे हैं और स्टूडियो में लाइव कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूँ रोहित सिंह और ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। खूब सा कार्यक्रम आपके आपके साथ में हम मिलकर देंगे आपके लिए खूब सा कार्यक्रम, खूब से संगीत, मिले जुले संगीत का कार्यक्रम। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701 कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है, ठीक है अभी से लेकर 2:30 बजे तक देश विदेश में आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। अगर आप इस स्टेट में हैं, हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है, आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। आप ब्रिस्बेन में है, ब्रिस्बेन में हर एक जहां पर हमारी आवाज पहुंच रहा है आप तक, आपका हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है खूबसूरत कार्यक्रम में शाम का सफर।

यात्री का मिले जुले संगीत कार्यक्रम है, फोन कर सकते हैं आप 3279-1701 पर। शायद आप भोजन कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा दिन है, मौसम खूबसूरत सा है दोस्त साथियों, जरूर से हमारे साथ हो जाएगा। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक शाम का सफर में रोशनी के साथ है, साथ जरूर दीजिएगा।

अब साथ अगर आपने अपना रेडियो भी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो भिजवानी पर। मैं हूं रोहित सिंह, ठीक है। पिछले के ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो भिजवानी पर शाम का सफर में। हमेशा की तरह फोन नंबर 3279-1701। अब चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए स्थानीय कलाकार, स्थानीय कलाकार में स्वर्गीय दयानंद की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

प्रोफेशन के साथ इकार के आप सभी रेडियो रिजवानी पर सुनने चलते एक और एक खूबसूरत गीत स्वर्गीय दयानंद की आवाज में। उम्मीद करता है नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। याद कीजिएगा आपका हमारे साथ है, ठीक है। अभी से लेकर 2:30 तक आप जरूर से भी फोन कर सकते हैं 3279-1701 पर रोहित सिंह के साथ शाम का सफर में।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ तां जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुणो। होर जाणो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
4: साथियों, आप सभी जानते हैं कि कल से गणेश चतुर्थी शुरू हो रहा है और इस पर्व के लिए आप सभी को शुभ और मंगल में हो और उम्मीद करता हूं कि पर्व आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से मनाएंगे। चलते हैं गणेश चतुर्थी पर आधारित, गणेश पर आधारित दो भजन हम आपके लिए पेश करते हैं और फिर कार्यक्रम का रुख हम आपके लिए फिर बदलते हैं थोड़ी देर में। चलते हैं खूबसूरत सा भजन आप सभी के लिए।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

उनका साथी आर की जगह रोशनी के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के लिए फरमाइश करने वाले श्रीमान श्रीमती रवि प्रताप, आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत।

शाम का सफरनामा कार्यक्रम याद कीजिए रोहित के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर आप सभी सुन रहे थे। अभी से लेकर 2:30 बजे तक आप हमें फोन कर सकते हैं 3279-1701 पर। 2:30 बजे तक जुड़े रहेगा हमारे साथ रेडियो ब्रिजवानी पर।

जाते थे, तो साथी रोहित सिंह के साथ ही कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक चलते कार्यक्रम का रुख बदलते हैं और खूबसूरत गीत जो हमारे पास है इसे हम बारीकी से आपके लिए पेश करेंगे। जब से साथ दीजिएगा ठीक 2:30 बजे तक शाम के सफर में।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचे कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
4: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
3: और इसके अपने याद करना चाहते हैं शिवा शिवते गंगा और गीता प्रसाद का।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

रूल सिंह के साथ आप सभी शाम का सफर सुन रहे हैं और ठीक याद कीजिएगा 2:30 बजे कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप इसके साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे ठीक 5 बजे तक।

0: खूब सबसे कार्यक्रम रोहित के साथ रेडियो ब्रिजवाणी पर 7 बजे का ठीक 2:30 बजे तक।
1: एक बात दिल में आई है कहूं या ना।
0: याद कीजिए खूबसूरत गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

जो साथ इस गीत के साथ साथ अपने कार्यक्रम के समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से होगा। रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सू के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और हमारी आपकी मुलाकात अगली बार होगी। और जाते जाते हैव अ बेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड अ ब्यूटीफुल वीक नेक्स्ट वीक। और इसी के साथ साथ हम आप सभी से रुख्सत लेते हैं। नमस्ते, हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून, शब खैर और विनाका।

रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।

दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर, हमारे स्टूडियोज 17 मार्च रॉक्स ब्रिस्बेन से। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके साथ दिया रोहित सिंह ने चलते हैं आपका हमारा साथ है यानी कि सू के साथ, अब इससे लेकर ठीक 5 बजे तक।

के साथ साथ हम इसी के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रिस्बेन की आज जो वेदर है बिल्कुल ही समरी वेदर है। तो आप जो भी करना चाहते हैं बिट हॉट एंड कोल्ड एडजस्ट करना पड़ता है थोड़ा बहुत।

के साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है, आपकी जन्मदिन है, कुछ भी है, कुछ भी सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी सी बधाइयां मिले। 3279-1701 हमारा स्टूडियो डायरेक्ट लाइन है, अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं ये डेडिकेशन, और नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं।

मन कभी कभी क्या करता है, मन करता है तुम्हें नजर में बसा लो, औरों की नजरों में तुम्हें बचा लो। कहीं चुरा ना ले तुम्हें मुझसे कोई, आ तुम्हें मैं अपनी धड़कन में छुपा लूं।

आपने सुना फिल्म धड़कन से लेवा गीत अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में पर्दे पर सुनील शेट्टी के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए रफी साहब की आवाज का अगला गीत सुनते हैं पर्दे पर शमी कपूर आशा पारे के लिए। आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाज दिल दिख देखो।

बहुत प्यारा संगीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग रफी साहब की आवाज में आपने सुना दोस्तों। दिल देख देखो फिल्म का नाम। चलते हैं एक ऐसा गीत सुनते हैं, शायद हमारे जितने भी मुस्लिम दोस्त है भाई बहन है उनको बहुत अच्छी लगेगी। इट्स अ मीनिंगफुल, केवल मुस्लिम को नहीं हिंदुओं को भी अच्छी लगेगी। इट्स अ ब्यूटीफुल नात सॉन्ग है जिसमें बहुत सारे से टचिंग और मीनिंगफुल है। सुनते हैं कौन सा गीत है आप सभी के लिए।

इस गीत में हम याद कर रहे हैं जिल्मिया के टोनी, शम्मी और उनके फैमिली को जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम टू रेडियो विस्पानिया।

0: बहुत प्यारा सनात गीत आपने सुना दोस्तों, और आई गॉट अ बिग फीडबैक हियर फॉर दिस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। और साथ साथ में खतीजा एंड फिरोज फ्रॉम विशाट, आपने भी हमें बहुत अच्छी फीडबैक भेजा, पहली बार हमें सुन रहे हैं जुल्मिया में। टोनी साथ में है, शमा शमी और उनके परिवार, स्वागत है आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेनी AM से।
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है, असि 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन, असि होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां, अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां, 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां, स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां, नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है, असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन, असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां, अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां, 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां, स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां, नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो, डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन, जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ, असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी कि 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है।
0: तो चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए, जबकि समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 3 ही बजने वाले हैं, 1 मिनट रह गए हैं 3 बजने में। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो ब्रिस्बेनी AM पर, ए है शाम का सफर। हम चलते हैं ऐश ग्रोव एवेन्यू की ओर दोस्तों, हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है ऐश ग्रोव एवेन्यू से रजीना चौधरी और आनंद चौधरी की ओर से, आप दोनों के लिए बहुत प्यारा सा, जब आप लोगों ने भजन की रिक्वेस्ट किया है सुनते हैं, बिल्कुल प्यारा सा भजन है, इसे मैंने लिया है राजस्थान एल्बम से।

0: दोस्तों, इस भजन को मैंने लिया था राजस्थान एल्बम से, और फरमाइश करने वाले थे एशग्रोव एवेन्यू से रजीना चौधरी, आनंद चौधरी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
0: और दोस्तों, चलते हैं आगे बढ़ते हुए अगला गीत की ओर। हम बढ़ते हैं अगला गीत के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है गजल की। गजल की फरमाइश किसने किया है? सैक्रामेंटो यूएसए से विजय और साथ में कामनी। जी हाँ, विजय और कामनी, आप दोनों की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गजल।
3: गजल की खास फरमाइश आई है, कुछ पीने पिलाने से मतलब रखती है। गजल से पहले चंद कतात भी पेश करूंगा। जख्म सीने की कसम खा लूंगा, जख्म सीने की कसम खा लूंगा, साथ जीने की कसम खा लूंगा। आज जी भर के पिला दे साकी, कल से ना पीने की कसम खा लूंगा।

आप सोचते होंगे मैंने बहुत पी रखी है। दोस्तों सच तो ये है, ये कल जो पी थी उसका नशा है, आज का नहीं।

क्रेडिट स्विस गजल फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से, जहाँ में सुन रहे विजयन और कामनी। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 18 मिनट हो गए हैं 3 बजकर, और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है, स्वागत है आप सभी का। अगर आप ड्राइव पर है और हमारे साथ ड्राइव करते रहे, प्रोग्राम का मजा लेते रहे, चलते हैं अगली फरमाइश है द गैप से ध्रुव और अरुणा की ओर से। आप सुनना चाहते हैं अगला गीत।

0: तो फरमाइश करने वाले थे इस गीत को ध्रुप अरुणा फ्रॉम द गैप।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: चलते हैं दोस्तों अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। और किसने फरमाइश किया है अगला गीत की? फिरोज और खतीजा जो हमें सुन रहे हैं विशाट में, आप दोनों के लिए फिल्म करंती सिलेवा गीत।

तो दोस्तों इस गीत को फरमाइश करने वाले थे फिरोज और खतीजा जो हमें सुन रहे हैं विशाट में। अगला गीत के लिए गजल की फरमाइश है हमारे पास। जगजीत सिंह की गजल की फरमाइश किसने किया है? जी हाँ, ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।

और दोस्तों इसको आपने सुना गजल गीत को जगजीत सिंह की आवाज में फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। हम चलते हैं दोस्तों जिल्मिया की और हमारा प्रोग्राम सुने टॉम मनीराम आपकी फरमाइश पर सुनते हैं जो मजा है फकीरी में सूफी कव्वाली।

बहुत प्यारा शाकावाली गीत आपने सुना, जो मजा है फकीरी में ओ मजा नहीं अमीरी में, सूफी कवाली से मैंने लिया था। फरमाइश आई थी हमारे पास जीवंग सिटोम मनीराम की ओर से। थैंक यू एवरीवन फॉर लविंग द प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फीडबैक आ रही है, रियली अप्रिशिएट ऑल योर फीडबैक्स आउट हियर। हम चलते हैं अच्छा फील की ओर। फरमाइश है हमारे पास अनवर और शहरुल की ओर से, आप दोनों की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: तुम्हारे दिल की तड़प तुम ना समझ सके. ब्यूटीफुल सॉन्ग हमारे पास फरमाइश आई थी अनवर और शेरुल की ओर से फ्रॉम माचो फील.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
4: तो ओम्सॉर्ग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्सॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओम्सॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी.
0: चलते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया USA की ओर और बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ गए हैं रोहितेश, जो बैक होम कैलिफोर्निया में हमें सुन रहे. हेलो रोहितेश, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन. चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत.

0: किशोर कुमार की आवाज का ब्यूटीफुल सॉन्ग और फरमाइश किसने किया? रोहितेश जो हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त कैलिफोर्निया यूएसए में।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
0: दोस्तों हम बढ़ते हैं सिडनी की ओर, ग्रीन एका सिडनी से फरमाइश है हमारे पास रचिन मालती प्रसाद की ओर से। आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत मुकेश लता की आवाज।

बहुत प्यारे गीत फरमाइश करने वाले थे रचेन और मालती प्रसाद फ्रॉम ग्रीन एकर सिडनी। हम दोस्तों चलते हैं यहाँ पर केड्रोन पार्क की ओर और केड्रोन पार्क से हमारे पास फरमाइश है। किसकी फरमाइश है जी? हमेशा की तरह जोनी और सविता की ओर से। और इससे पहले हम आप सभी को कहना चाहते हैं कि टुमोरो मंडे, क्या पता है आपको, गणेश चतुर्थी। जी हाँ, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत सारी सी बधाइयाँ। और जो वहाँ पर जोनी और सविता के रोन पार्क में सुन रहे हैं, कोई गणेश चतुर्थी का गीत सुनना चाहते हैं तो एक गीत जो मैंने लिया है, देखिए आपको कैसे लग रहा है।

0: గోరసా बहुत प्यारे सा गणपति बप्पा मोरिया इस डीजे पर मैंने इस गीत को लिया था। हमारे साथ शामिल हो गए थे केड्रोन पार्क से जोनी और सविता। इसी के साथ साथ दोस्तों रेडियो विजवाणी पर 5 मिनट हो गए हैं 4 बजकर। यह शाम का सफर, संडे शाम सफर पर आपके साथ है। सो शामिल हो गए हमारे साथ, हम चलते हैं कैलिफोर्निया USA। मैक्स प्रसाद आपके लिए अगला गीत। मैक्स
1: का मैं एक भी लम्हा क्यों पाऊं, मैं पल दो पल का शायर हूं। पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है।

0: मैं पल दो पल का शायर हूँ। आपने सुना मुकेश की आवाज का गीत, फिल्म का नाम था कभी कभी, बहुत प्यारा सा गीत। फरमाइश करने वाले थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: तो हम चलते हैं 8 माइल्स प्लेन्स की ओर दोस्तों, और 8 माइल्स प्लेन्स से हमारे पास फरमाइश आई है, जहां मैं सुन रही अल्पना। हाय अल्पना, चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।

और ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी हाँ अल्पना जी, आपकी चॉइस मेरी चॉइस एक जैसी है कुछ। इस गीत को फरमाइश करने वाली थी अल्पना, जो हमें सुन रही है 8 Miles प्लेन्स में। अल्पना, यू शुड ज्वाइन मी ऑन सैटरडेज ऑन पार्टी टाइम, बट क्या करें, आपको सैटरडेज को काम करना पड़ता है ना। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं। हमारे पास कुछ फरमाइशें हैं दोस्तों। ये जो फरमाइश है हमारे पास, आपको पता है कि कल रात ब्रिस्बेन में लाइट हाउस कम्युनिटी हॉल में, फॉरेस्ट लेक में, एक सरगम नाइट की शो किया गया था, जिनमें आपको पता है कि हमारे ब्रिस्बेन में भी एक मिथुन चक्रवर्ती भी रहते हैं और उनकी वाइफ है बंदिता, और दोनों ने मिलकर एक चैरिटी आसाम के लिए, उनकी अपनी कंट्री के लिए एक शो किया। द शो वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत सुंदर थी। और जो गीत उन्होंने गाया था जो लास्ट बीट में हाफ वे, इट वॉज अ लॉट ऑफ डांसिंग विच वॉज रियली नाइस। जो भी महिलाएं थी, दे ऑल ड्रेस्ड अप ब्यूटिफुल इन द सेम कॉस्ट्यूम, और बहुत अच्छी लगी उनकी शो, बहुत प्यारी लगी। और उनमें से जितने भी बैंड ग्रुप थे, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है, आई शुड से ऑल दिस, क्योंकि हमारे लोगों को भी पता चले कि उनकी शो में कौन कौन से बैंड में लोग थे। जी हाँ, एक भी इंडियन नहीं थे, सभी सारे जो बैंड आर्टिस्ट थे दे वेर फ्रॉम श्रीलंकन, और सभी मिथुन उनके सभी के गुरु है, दे ऑल स्टूडेंट्स। और उन्होंने बहुत अच्छी, बहुत धूमधाम से, बहुत सुंदर से ही उनका बैंड प्ले किया। और उनमें से एक लड़का था जो श्रीलंका ने, उन्हें बिल्कुल हिंदी नहीं आती है, लेकिन हिंदी गाने सभी गाए, बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है दिनेश की ओर से, और उनकी वाइफ जो केनिया के है, वो देवर ऑन रेडियो 4AB हमारे साथ में थे उन दिनों में, मुझे उतना याद नहीं है, बट फिरोज भाई उनके अच्छे दोस्त है। फिरोज अगर आप सुन रहे हैं तो दिनेश शर्मा जी, आपको हेलो बोले हैं, आपको, आपके बहुत अच्छे दोस्त है रेडियो 4AB से। मैं भी 4AB पर थी, बट मुझे पता नहीं, याद नहीं है। एंड दे आर फ्रॉम केनिया, उनकी वाइफ इज फ्रॉम केनिया, शी इज 75 ईयर्स ओल्ड, और उन्होंने इतने सुंदर से हिंदी गाना गाए हैं और पूरे सारे जोर से टुमके भी लगाए हैं, जो मेड द ऑडियंस रियली रियली हैप्पी। तो चलते हैं, उनको याद करते हैं। और बंदिता मिथुन ने जो एक गीत गाया था आखिरी में, मोनिका ऑन माई डार्लिंग, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ही बोला बंदिता ऑन माई डार्लिंग, दैट वॉज ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द शो। चलते हैं, सरगम नाइक के जितने भी लोगों ने हमारे प्रोग्राम में इस गीत को रिक्वेस्ट किया है, कहा है कि इसके लिए हम कुछ बोल दें, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपने मिस कर दिया है, द शो वॉज ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर शो थी जहाँ पर हम कल रात को गए थे, दैट्स लाइट हाउस फॉरेस्ट लाइक कम्युनिटी हॉल पर। तो चलते हैं उनके लिए अगला गीत सुनते हैं।

0: इस मधुर गीत को।
1: तो दोस्तों, इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे वहाँ रोबिन और उषा फ्रॉम परमाटा सिडनी।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगला विच आग लगती है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी आग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
4: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
4: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
6: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
1: चलते हैं एक बार और फिर दोस्तों हम कैलिफोर्निया यूएसए की ओर, और माफ कीजिएगा सैक्रामेंटो यूएसए, और जहां पर हमें सुन रही है कामनी और ललिता गौतम। आप दोनों की फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग जी। दोस्तों इसको फरमाइश करने वाली थी ललिता गौतम और साथ साथ में कामनी जो हमें सुन रही है सैक्रामेंटो यूएसए में।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: और हाँ दोस्तों, याद है रे सोलर पावर। और रे सोलर पावर आपके लिए क्या करते हैं जी? रे सोलर पावर गुड वेट बैटरीज आर ऑन स्पेशल, सो डोंट मिस अ चांस, डू रिंग देम, कॉल रे ऑन 0430-525-896। जी हाँ, गुड वेट बैटरीज आर ऑन रियली ऑन स्पेशल एट रे सोलर पावर, सो कॉल रे ऑन 0430-525-896। चलते हैं अगला गीत जो है डेडिकेटेड बाय रे सोलर पावर एंड द स्टाफ टू ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो विस्फानी। मुकाबला, बहुत दिनों बाद आप इस गीत को सुनने जा रहे हैं। रे सोलर पावर की रे की चॉइस पर इस गीत को आप सुनने जा रहे हैं।

अच्छा दोस्तों, इस गीत को फरमाइश करने वाले थे, डेडिकेट किया था इस गीत को रईस सोलह पावर के रईस सोलह पावर वुड लाइक टू अनाउंस अ लिटिल अनाउंसमेंट फॉर ऑल द लिसनर्स ऑन रेडियो हिस्पैनिक दैट अगर आपको सोलह बैटरीज चाहिए, Goodwill batteries are really on special, so contact Ray on 0430-525-896. आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं मेनली वेस्ट की ओर दोस्तों, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं मेनली वेस्ट में लक्ष्मी। लक्ष्मी आपके लिए पेश है अगला गीत।

और हमारे साथ शामिल हो गए थे लक्ष्मी फ्रॉम मेनली वेस्ट. आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी. इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 5:45 बज चुके हैं और हमारा साथ होगा आपका ठीक 5 बजे तक.

तो इस गीत को हमें यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कल टुमोरो गणेश चतुर्थी है, और इस पर हम आज चलते चलते अपना जो प्रोग्राम है एक बहुत प्यारा सा गणेश मंत्र से समाप्त करना चाहते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 5 ही बजने वाले हैं। हमारा आपका साथ यहीं तक था और कल आपको सभी को पता है कि गणेश जी का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है। आप सभी खुशी खुशी गणेश जी का गणेश चतुर्थी आप सेलिब्रेट करें और गणेश भगवान आप सभी को ब्लेसिंग्स दे। इसी के साथ साथ हम आपको ये कहना चाहते हैं, नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक यू, लव यू ऑल अंटिल नेक्स्ट वीक। और याद रहे 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगी शशि चौखन, साथ उनका जरूर दीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

0: or carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस.

0: एक रंगीन शाम आपके नाम शशि जोखन के साथ
1: ये शाम शानदार।
2: हाँ जी, रविवार की शाम और 5 बज चुके हैं, आपका स्वागत है एक रंगीन शाम आपके नाम पर। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम। 5 बज चुके हैं, मैं शशि जोखन आपका साथ दे रही हूँ। और कहते हैं ना कि अंदाज अपना अपना होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में हमेशा विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस खुशियों को मनाने का अंदाज होना चाहिए। तो चलो करते हैं आप सभी का स्वागत, कहते हैं नमस्कार, केमछो, सास्त्रीय काल और अस्सलाम वालेकुम। रविवार 13 तारीख सितंबर की शाम, स्वागत आप सभी का।

एक बार फिर आपका स्वागत है एक रंगीन शाम आपके नाम कार्यक्रम में। पूरे 7 बजे तक हम आपका साथ देंगे, इसी तरह आप भी हमारा साथ देती ही रहिए। स्वागत करना मेरा काम है, साथ देना आपका, ठीक है।

हाँ जी, आराम से बैठिए, चाय का कप उठाइए और सुनते रहिए एक रंगीन शाम आपके नाम।

हाँ जी, सुनते ही रहिए। वीकेंड का मजा अभी बाकी है ना, पूरे मध्य रात्रि तक चलते रहेगा रेडियो ब्रिजवानी, जब तक आप जगे रहेंगे, बजाते रहेंगे अच्छे अच्छे गीत आप सभी के लिए। और देखिए, नए और पुराने गीतों का संगम है एक रंगीन शाम आपके नाम, जो हर रविवार को मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए। और अच्छे अच्छे गाने जो कभी नए कभी पुराने कभी बस पीछ वाले गाने, ठीक है। और अब सुनिए ये, देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी हालात से गुजर रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, आप सभी को हम इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको कुछ कुछ खुशहाली से भर दे आपका समय, ये मैं कहना चाहती हूँ। चलो चलते हैं धुरंधर की ओर। याद है ना 2025 की ये फिल्म।

हाँ जी, ये गाना आप, जैसे हमने कहा कि ये फिल्म धुरंधर से हमने आपके लिए ली है, और फिल्म धुरंधर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, एक्चुअली इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया और बहुत ही बढ़िया फिल्म इसे कहा जाता है। ये भारत का एक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक रही है, और ये कहानी एक गुप्त आतंकवाद विरोधी यानी काउंटर टेररिज्म मिशन पर आधारित है, और रणवीर सिंह का किरदार इसमें मुख्य किरदार आप कह सकते हो, और उनके साथ कई एक्टर्स काम किए थे जैसे कि अक्षय खन्ना, उनके तो रोल इतना पसंद किया गया, लोग उन्हें इतना बेहद पसंद किए, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, ऐसे बहुत सारे स्टार्स इसमें काम किए, तो हमने सोचा कि चलो आज इसी फिल्म के दो गाने

कैसा लगा आपको ये गीत? देखिए, आज पारिवारिक विषय में आप सोच रहे होंगे क्या लेकर आएंगे आज हम 6 बजे के बाद. तो क्या आपने कभी ये सुना है किसी को कहते हुए कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? सुना होगा ना आपने. ठीक है, अगर आपने सुन रखा है. हाँ जी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो इसी पर हम आज कुछ चर्चा करेंगे. दिस इज आफ्टर 6, ठीक है. एंड ऑल्सो आज का जो इंग्लिश शब्द है वो है डेमोक्रेसी, ठीक है. डेमोक्रेसी इज द वर्ड. और आप इसकी जो हिंदी शब्द है इसे लेकर मेरे लिए आइए, ठीक है. एंड देन विल डिस्कस लेटर. और वैसे छोटी छोटी बातें बहुत कुछ है, छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट भी लेकर आई हूँ. और इसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि हर हफ्ते की तरह नए और पुराने गीतों का संगम और कुछ ऐसे गीत जो 70s, 80s, 90s के. तो इसे तो अभी हम यहीं पर छोड़ रहे हैं, मगर लेकर आपको चलते हैं. जबकि गणपति महोत्सव आने वाली है, तो यानी चतुर्दशी, एक्चुअली श्री गणेश चतुर्थी, यस, ये आने वाली है. तो इसी को ध्यान में रखकर ये गीत आपके लिए लेकर आई हूं. सो हमारे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपके लिए ये हमारी ओर से.

हाँ जी, श्री गणेश चतुर्थी यानी गणेश उत्सव आरंभ होने जा रही है मंगलवार को, और अलग अलग कैलेंडर में शायद अलग डेट हो, मगर मेरे पास तो यही है। खैर, ऋतिक रोशन स्टार है ये फिल्म अग्निपथ, जो 2012 की फिल्म थी, उसकी ये प्रसिद्ध गाना देवा श्री गणेशा, एक बेहद शक्तिशाली और भावनात्मक भजन आप कह सकते हो, जिसे अजय गोगावले ने गाया है और इसका संगीत अजय अतुल की जोड़ी ने तैयार की। और इस गाने को फिल्म में एक महत्वपूर्ण और नाटकीय मोड़ यानी टर्निंग पॉइंट पर दर्शाया गया। इस फिल्म में इनके साथ प्रियंका चोपड़ा दिखी थी। हाँ जी, दैट्स राइट। एनीवे, सो ये थे आपके लिए ये नगमा और ये भजन आप कह सकते हो। और अब हम चलते हैं आपको लेकर एक और गीत की ओर, मगर आपको बता देती हूँ कि 6 बजे के बाद जरूर याद रखिएगा पारिवारिक विषय, मगर इन बिटवीन मैं आपके लिए ऑफकोर्स लाई हूँ छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट, मगर अभी तो आप सुनिए ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

हाँ जी, तो ये गीत ज्यादातर गुजराती सॉन्ग आप इसे कह सकते हो। गरबा के समय बहुत ही हाई एनर्जी सॉन्ग इसे आप, अभी गरबा आई गेस नवरात्रि आने ही वाली है, 11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है ना, तो ऐसे में एंड आप सोच रहे हो कि जिसको पता नहीं है, जिन लोगों को, कि ये नवरात्रि है क्या, तो नवरात्रि एक्चुअली ये एक बहुत ही वाइब्रेंट फेस्टिवल है जो गुजरात का फेस्टिवल है। नवरात्रि हमारे गुजराती भाई बहन इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये माताओं को लेकर, यानी कि जितने भी हमारे हिंदू ऐसे भगवान है जो लेडीज माँ है, उन पर ये नवरात्रि बनाई गई है, मनाई जाती है इसके लिए। सो ये थी उसके बारे में कुछ बातें, और अब चलते हैं, थोड़ा मूड को चेंज करते हैं। खैर, हाँ जी, मूड को चेंज करते हैं हमने कहा ना, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और देखते हैं कि है क्या हमारे पास। मगर इतना आप याद करिए कि 6 बजे के बाद में ये जो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इस पर हम पारिवारिक विषय आज लेकर आए हैं, तो जरूर जरूर इसमें साथ दीजिए एंड वी माइट लर्न समथिंग फ्रॉम इट। चलो, हंस मत पगली, बहुत

0: फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से ली गई है ये नगमा। किसको लगता है कि ये अंडररेटेड सॉन्ग है? हाँ, बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। बस यही है कि आपको पसंद आना चाहिए। एंड सभी लोगों का जो इंटरेस्ट है, टेस्ट है म्यूज़िक का, अलग अलग होता है ना। मगर कुछ ऐसे गाने होते हैं जो लोगों को याद रहते हैं, कुछ खास ऐसे नहीं लगता है मगर फिर भी लोग इसे याद ज़रूर रखते हैं। जब बजते हैं ऐसे गाने तो लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। खैर देखिए, बहुत ही खुशनुमा मंजर है ना, सुहाना मंजर, सुहाना मौसम। और आज आज ब्रिस्बेन में मौसम आपकी जगह पर कैसा है? मौसम वैसे तो दुनिया भर से लोग सुनते हैं, जुड़ जाते हैं हमारे साथ, मगर ब्रिस्बेन का जो मौसम है वो है अभी मेरे ख्याल से 21 डिग्रीज या ना 21 डिग्रीज एंड हाईएस्ट हाई 24 आज के लिए, और ओवरनाइट में लगभग 13 डिग्रीज हो जाएगा। सो पार्टली क्लाउडी और सनी एज वेल। सो बढ़िया, मैं तो कहूँगी कि बढ़िया मौसम है एंड थोड़ा कूलिंग साइड है, सो विच इज़ वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स सीजन चेंज हो चुकी है एंड अब थोड़ी थोड़ी नाइस वेदर आपको मिलेंगे क्योंकि विंटर खत्म हो चुकी है ना।
1: ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार्ट से हमारे दोस्त शम्स आलम, जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

क्रम से आपको कुछ राहत मिल रही होगी और आपका आपके मूड में कुछ बदलाव आया होगा, और अब तक तो शायद आपकी चाय भी खत्म हो गई होगी ना, मगर चलो अरिजीत सिंह की ओर मैं आपको लेकर चलती हूँ उन्हीं की आवाज में।

हाँ जी, अरिजीत की आवाज में ये बहुत ही बढ़िया सा गीत। कहते हैं ना कि जब मन की बात ना हो, जब सब कुछ मन मुताबिक ना हो, तो दुखी क्यों होते हो? दुखी होते ही क्यों हो भाई? ये दुनिया तुम्हारे अकेले के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं बनी है ना। तो ये संसार एक विशाल रंगमंच है जहाँ हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। आप भी निभा रहे हो, हम सभी अपने अपने जगह पर निभा रहे हैं एक भूमिका, ठीक है। जैसे कि एक प्ले हम देखने जाते हैं, तो इस दुनिया में हम सभी आए हैं एक प्ले की तरह ही अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। तो तुम्हें दर्द होता है, तुम्हारा दिल टूटता है, मगर इस दुनिया को इससे रक्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सूर्य कल भी अपने समय पर उगेगा, हवाएं वैसे ही बहेगी, तुम रहो ना रहो ये संसार

रुकने वाला नहीं है। कितने महापुरुष, कितने सम्राट आए और चले गए ना, लेकिन समय का जो धारा है आज भी वैसी ही प्रभावित है। नदी में हाथ डालने पर जो लकीरें बनती है ना, हाथ हटाते ही वे मिट जाती है। हमारा अस्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। ये दुनिया एक मेला है और मेला किसी के लिए नहीं रुकता। तुम अपना काम जो कर रहे हो बस भली भांति ऐसे ही करते रहो, क्योंकि ये जो मेला है ये हमको एक किरदार के तौर पे भेजी है यहाँ पर। अभी देखिए जो नेपाल में घटना घटी है, हम लोग बहुत बहुत सारे लोग बहुत ही दुखित हुए, दुनिया भर के लोग बहुत घबरा गए थे उसे देखकर। मगर वहाँ पर जिंदगी रुकी नहीं है, लोग अपने काम कर रहे हैं, जिंदगी आगे बढ़ रही है और हमें इसी तरह इसे एक्सेप्ट करके चलना ही पड़ता है। सो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आपकी जो हेल्थ है उस पर इसका बुरा असर पड़े, ठीक है। सो चलते हैं आगे।

0: जी, बहुत ही बढ़िया से गीत पसंद आए आपको। एनीवे, अब हम आपको लेकर चलते हैं छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट की ओर, और देखते हैं कि आपको ये बातें पसंद आए या नहीं आए किसी और की जुबानी।
1: करनी है कर लो, जितनी किसी के साथ बेईमानी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो। एक बात याद रखना, जिस दिन तकदीर ने पलटा खाया और तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे आगे आने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन मत घबराना, उस दिन मत परेशान होना। एक बात मेरी याद रखना, ये सर्कल घूमता है, ये टेबल घूमता है, और तकदीर की जो मार होती है ना वो बहुत बुरी होती है, ये याद रखना, यही जिंदगी का असूल है। जितनी जिसके साथ ज्यादती करनी है कर लो, जितनी किसी के साथ बेईमानी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो। एक बात याद रखना, जिस दिन तकदीर ने पलटा खाया और तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे आगे आने शुरू हो जाएंगे ना, उस दिन मत घबराना, उस दिन मत परेशान होना। एक बात मेरी याद रखना, ये सर्कल घूमता है, ये टेबल घूमता है, और तकदीर की जो मार होती है ना वो बहुत बुरी होती है, ये याद रखना, यही जिंदगी का असूल है। जितनी

0: जी, फिल्म चलते चलते से ली गई ये नगमा, और इस फिल्म में एक्चुअली शाहरुख खान के साथ रानी मुखर्जी दिखी थी। और एनीवे, आज तो है 13 तारीख सितंबर, और हाँ जी, आपका स्वागत एक बार फिर कर रही हूँ, और एक रंगीन शाम आपके नाम आप सुन रहे हैं, और मैं शशि, रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर हर रविवार को 5 से 7 बजे तक आपका साथ देती हूँ। और देखिए, आज तो 13 तारीख है, मगर 15 तारीख सितंबर ये एक बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे ये भला क्यों। खैर, एनीवे, इसकी जो शुरुआत है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2007 में एक प्रस्ताव पास करके इसे मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और जो पहली अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 तारीख सितंबर 2008 को मनाया गया था। तो आप सोच रहे होंगे इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसे मनाते हैं। तो दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना और लोगों को उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को निभाने के लिए याद कराना, इनके प्रति जो जागरूकता है, इसे उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे जागरूक करने के लिए ये होता है। तो लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी होती है, ये दुनिया भर में डेमोक्रेसी को लेकर लोग कहते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ लाइफ अच्छे होते हैं। ठीक है, मगर कुछ कुछ जगह पर डेमोक्रेसी के बदले कुछ और ही होते हैं, वहाँ पर लीडरशिप जो होती है उनकी चलती है एंड ऑल दैट। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, और ऐसे देश में रहना चाहते हैं जहाँ डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं लोगों के। पर एनीवे, तो ये थे आपके लिए, एंड मैं आपके लिए आज एक गीत लेकर आई हूँ, आप इसे सुनिए एंड देन यू टेल मी कि कैसा रहा। बता,
1: सुनो ये दुनिया, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, हर दर्द के बाद एक नई कहानी बनती है। आज आवाज छोटी लग सकती है, लेकिन कल यही आवाज बदलाव बनेगी। बस भरोसा रखो, वक्त

0: जी, ये जिंदगी बहुत सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है हमें ना। हर पल हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, एंड वी शुड बी ओपन टू दैट। सो हर पल कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पल में हंसाती है ये जिंदगी, पल में रुलाती है ये जिंदगी, ठीक है। जो हर हाल में खुश रहे, ये जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। सो हार ना मानिए, ठीक है। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए, हम देते रहेंगे आपका साथ, एंड कार्यक्रम को बस इसी तरह आगे हम बढ़ाते ही रहेंगे। एंड सुनिए आप,
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: हाँ जी, बस इसी तरह सुनते ही रहिए, हमारा साथ देते ही रहिए, और हम आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि साथ देंगे एक दूजे का तो ही तो हमारा मन बहला रहेगा ना, वरना मैं अकेले क्या बोलती रहूंगी। आप सुन रहे हो ना, जरूर सुनते ही रहिए। खैर, एनीवे, 6 बज चुके हैं, एक्चुअली 10 पास्ट होने वाली है, एंड यानी कि 6:10 होने वाले हैं। तो आज के जो पारिवारिक विषय मैं लाई हूँ आपके लिए, जैसे हमने पहले आपसे कहा कि क्या आपने कभी ये सुना है, सुना जरूर होगा किसी को कहते हुए कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि एज एन इंडिविजुअल हम जो भी करते हैं, मैं कहती हूँ एज एन इंडिविजुअल, एज अ कम्युनिटी ये तो अलग की बात है, ठीक है। पहले तो इंडिविजुअल पर ही चलते हैं, हम जो भी करते हैं अंत में वो अपने लिए ही करते हैं। सो इसलिए हमें, हालांकि कोई भी कार्य करने से पहले पहले ये सोचना चाहिए, क्योंकि आप सुने ही होंगे कि कर्म बड़ा बलवान, कहते हैं ना, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। तो कर्म का बीज जो हम बोते हैं, उनके बोने के बाद होता क्या है, आप सोच रहे होंगे कि होता है क्या। खैर, उसका मतलब ये हुआ कि जो कर्म हम करने जा रहे हैं उसका फल हम ही को मिलता है, ठीक है, हम ही को मिलता है। तो चाहे हमारे फैमिली में किसी के ऊपर आते हैं ये, मगर हर्ट तो हम ही होते हैं। सो इसका मतलब है ये जो पेन है हम ही को मिलते हैं, तो उसका फल हमें भी मिलता है। सो इसके अलावा बोए गए प्रत्येक यानी एवरी कर्म के बीच से हमें केवल एक फल ही नहीं मिलता, बल्कि अक्सर हमें पूरी फसल मिलती है। समझ में आई आपको? और ये कर्म के अनुसार अच्छी या बुरी हो सकती है, ठीक है। सो कुछ लोग कहते हैं कि कर्म जैसा कुछ है ही नहीं, कैसे ये मुमकिन है, जबकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहती हूं कि दो सोल्स होते हैं, एक का जन्म एक शाही परिवार यानी रॉयल घराना में होती है, और दूसरे का जन्म एक बेहद गरीब यानी आम से फैमिली में होती है, होती है ना, हम सभी जानते हैं। तो फॉर आर्ग्यूमेंट सेक आप कह सकते हो कि इसमें क्या तकलीफ है ना। एक तरफ रॉयल घराने में सब कुछ आपके हिस्से में आसानी से परोसा जाता है, जबकि दूसरी ओर ये जो जीवन है बेहद दुखदायक होती है। खैर, ये सोचने वाली बात है ना, फूड फॉर थॉट। अच्छे कर्म कीजिए एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि अच्छे कर्म का नतीजा अच्छा ही होता है, और बुरे का बुरा, और साथ में बहुत ही तकलीफदायक होती है। सो ये थे पारिवारिक विषय आप सभी के लिए, एंड आई होप इससे हमें, हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगी।

जी, एक बार फिर करते हैं आप सभी का स्वागत। आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और ये है रेडियो ब्रिजवानी का अपना ही कार्यक्रम 1701 पर। हर रविवार को 5 से 7 बजे तक ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके लिए। एंड हमारी उम्मीद हर हफ्ते यही रहती है कि आप हमारा साथ देते हैं और पूरे 7 बजे तक। हाँ जी, मैं भूल ही गई थी आपको बताने के लिए कि ये हिंदी रेडियो स्टेशन है 24/7, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर हिंदी में कार्यक्रम होते हैं। हिंदी गीत संगीत हम आपके लिए लेकर आते हैं। कहते हैं ना कि संगीत ही प्यार है, जीवन का आधार है। संगीत ही प्यार है, जीवन का आधार है, दिल में उठता एक झनकार है। संगीत ही जीवन में, तो जब संगीत है जीवन में तो खुशियों से भर जाता है हमारे घर संसार, होता है ना। सो यही हमारी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर ऐसे ऐसे नगमे लेकर आएं जो आपका जी बहलाएं। और मगर 14 तारीख सितंबर, तो हर साल 14 तारीख सितंबर एक बहुत ही स्पेशल डे होती है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसी दिन मनाया जाता है। एंड सो ये एक्चुअली टुमारो है ना, मंडे को, मगर हमने सोचा कि आज ही कुछ बोल दूं इसके बारे में। खैर, ये जो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, और तब से हिंदी को बहुत महत्व दिया जाता है। और हिंदी भारत के विभिन्न राज्यों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों को आपस में जोड़ती है। और यही हमारी भी कोशिश है यहाँ रेडियो ब्रिजवानी के माध्यम से कि आप सभी को जोड़े, चाहे आप जहाँ से भी हो, जो भी भाषा बोलते हो, मगर हिंदी हम आपके लिए लेकर आते हैं। एंड सो ये है कल का दिन, और कई देशों में, कई स्कूलों में इस अवसर पर, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सरकारी कार्यालयों में इस भाषा को, और इस भाषा में कविता और कई तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं। और ये हमारी मातृभाषा है और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है हिंदी। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ हिंदी, ठीक है। और सो एक गीत मैं और लेकर आई हूँ आपके लिए, जो मुझे लगा कि शायद आप, जबकि ये स्पेशल हिंदी दिवस है, इस गीत को आप सुनिए।

हाँ जी, हिंदी भाषा रेडियो ब्रिजानी के माध्यम से हम अपने अपने तरह से, अपने अपने ढंग से आपके लिए लेकर आते हैं। जितने भी रेडियो ब्रिजानी के अनाउंसर्स हैं, सभी आपके हित के लिए यहाँ आते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे गाने लेकर आते हैं, अच्छे अच्छे बातें लेकर आते हैं। जतीश जी और एनजी जी इस रेडियो ब्रिजवानी स्टेशन को बहुत सालों से संभाल रहे हैं, सो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे बच्चे भी कार्यक्रम सुनते हैं, तो बच्चों के लिए खास तौर से, और जो हिंदी बहुत नहीं जानते हैं उनके लिए जो इंग्लिश शब्द हम ढूंढ कर लाए हैं वो है डेमोक्रेसी। आप मुझे बताइए उसकी हिंदी शब्द क्या है।

0: जी बहुत ही बढ़िया सर, ये नगमा एक्चुअली फिरोज खान की फिल्म से ली गई, फिल्म धर्मात्मा, याद है आपको? सो ये उसी उसी फिल्म का ये नगमा। और बस ऐसे ही कार्यक्रम चलता ही रहेगा और हमारा समय यहाँ से निकलने का हो जाएगा, मगर यही मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आप हमारा साथ दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब छोटे से ब्रेक लेते हैं, अपने स्पॉन्सर्स का संदेशा आपके लिए लेकर आए हैं।
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस, माय डांस शैल स्पीक फॉर मी।
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर सुपर फैबुलस आउटस्टैंडिंग।
3: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा, लगा कैसा।
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान।
2: हिल मत चल।
3: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा? ओके
2: सॉफ्ट।
0: हाँ जी, जस्ट चिल, बस इसी तरह हमारा साथ देते ही रहिए और हम आपका साथ देते ही रहेंगे। और स्पॉन्सर्स का संदेशा ऑफ कोर्स आपके लिए लाए हैं।
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
4: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365। दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
6: नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
7: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
6: अच्छा, वो क्या?
7: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
6: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
7: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
8: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स, घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
9: is super easy. केवल अपने nearest dairy, supermarket और petrol station पहुँचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 top up. आप website www.digicelinternational.com visit भी कर सकते हैं। Digicel top up अपने family को Fiji देने के लिए, पैसा भेजने के लिए our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. केवल आपको register होना है at www.clickexpresspick.com पर। Digicel, we are better together.
0: हाँ जी, आप रेडियो ब्रिजवानी को कांटेक्ट कीजिए, एंजेला पूरन को कांटेक्ट कीजिए, अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाइए। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपकी बिजनेस कैसे आगे बढ़ेंगी? सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिचकिचाइए मत और आप फोन कीजिए रेडियो ब्रिजवानी पर एंजेला पूरन को, ठीक है?

0: खैर मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, मगर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। सो अब चलो देखते हैं। है नमस्तानी ये शाम।
1: कलाकार थे किशोरदा, मैं उन्हें भारत का डैनी के कहती हूँ। क्या नहीं थे वो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, कंपोजर, एक्टर और सिंगर। हर रंग के गाने को वो बड़ी आसानी से और बहुत खूबी से गाते थे। उनके आते ही स्टूडियो का सारा माहौल मुस्कुरा उठता था। गाना चाहे संजीदा हो या खुशी का, किशोरदा की शरारतें और लतीफे बराबर चलते रहते थे। मैं उनका चेहरा देखकर ही समझ जाती थी कि वो मुझे हंसाने की कोशिश करने वाले हैं, और पहले से ही कह देती थी, हाँ किशोरदा, पहले गाना फिर हंसना। वाकई उनके साथ गाने में बड़ा मजा आता।
0: लता जी किशोरदा के साथ काम करने में कैसा उसको महसूस होता था वो दर्शा रही थी। आज दोनों हमारे बीच नहीं है, मगर उनके गाने हमें हर दिन उन्हें याद दिलाती है, उनकी याद दिलाती है।

0: हाँ जी देखिए, 15 तारीख, ऑफ कोर्स 15 तारीख सितंबर, व्हाट इज इट, इट इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स राइट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी. और आज जो शब्द हम चुन कर लाए थे आपके लिए, वो शब्द भी डेमोक्रेसी शब्द ही थी. सो मैंने सोचा कि चलो बता दूं, अभी तक तो आप ढूंढ ही लिए होंगे कि उसका हिंदी शब्द क्या है. तो हिंदी वर्ड जो डेमोक्रेसी के लिए है वो है लोकतंत्र. ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र, और उसे प्रोनाउंस की जाती है लोकतंत्र, जैसे कि प्रजातंत्र है ना, तो इसी तरह लोकतंत्र. तो इसको मैं ब्रेक डाउन करती हूँ आपके लिए. ठीक है, जो लोकतंत्र जो होती है, लोक का मतलब पीपल यानी पब्लिक, ठीक है, और तंत्र का मतलब है सिस्टम, रूल, गवर्नेंस, ये सब है इसका मतलब. तो देखिए, एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसे सेंटेंस फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप कह सकते हो भारत एक विशाल लोकतंत्र है. ठीक है, तो ऐसे आप कह सकते हो, जैसे इंडिया इज अ वेरी इज अ वास्ट डेमोक्रेसी, ऐसे कहते हैं. और दूसरी ओर चले तो हमें अपने लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे आप बोल सकते हो. ठीक है, और लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में. हाँ जी, न्यूजीलैंड में तो इलेक्शन आने वाली है, आपके ऑस्ट्रेलिया में भी इलेक्शन आने वाली है ना. सो हमारे यहाँ पर नवंबर में है, लगभग मेरे ख्याल से 11 तारीख. सो एनीवे, ये है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी का जो हिंदी शब्द है उसको कहते हैं लोकतंत्र. ठीक है,
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए.
0: हाँ जी, सुनते ही रहिए इसी तरह, और हम आपको सुनाते रहेंगे अच्छे अच्छे गीत. फिल्म जीवल थीफ से ली गई है नगमा, एसडी बर्मन के संगीत पर, लिरिक्स मजरू सुल्तानपुरी द्वारा, किशोर दा की आवाज में.

0: हाँ जी, बहुत सारे गाने हैं हमारे पास आपके लिए, मगर हमने सोचा कि चलो आपके लिए ये नगमा लेकर आए जो मुमताज और धर्मेंद्र पर फिल्माई गई, और आई एम श्योर आप एंजॉय करेंगे। आज धर्मेंद्र जी हमारे मध्य में नहीं है, मगर फिर भी स्क्रीन पर उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी यहीं कहीं होंगे।
1: Mm-hmm. Mm-hmm.

हाँ जी, किशोर दा की आवाज में आप सुन रहे थे ये नगमा। कहते हैं ना कि किशोर जी उन्होंने जिस शब्द को छू लिया है, समझो वो शब्द गीत बन जाए। ऐसी महान आवाज, ईश्वरीय वरदान कहते हैं इसे। कहते हैं ना, जिसको अच्छी आवाज, बुलंद आवाज ईश्वर देते हैं, उस पर ईश्वर की वरदान होती है। ठीक है, अमिताभ बच्चन की आवाज आप सुनिए, कितने गंभीर, कितने सॉलिड वॉइस उनके। बट एनीवे, देखिए, एक मुझे ऐसी न्यूज मेरे हाथ लगी जो मैं दंग ही रह गई सुनकर। अब एक्चुअली ये क्या है कि सैन फ्रांसिस्को में, एक कोई किसी इलाके में, सैन फ्रांसिस्को में तीन बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स रहते थे, एक ही मेरे ख्याल से एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तीनों के पास बच्चे थे, फैमिलीज थे, अच्छा खासा काम सभी कुछ था। मगर अचानक क्या हो गया कि एक सहेली ने दूसरे दोनों की जान ले ली, और ये कोई और नहीं, हमारे भारतीय ही है। Isn't that shocking? एकदम मैं दंग ही रह गई सुनकर कि हम अपने किस पर विश्वास करें लोग, है ना, अपने अपने सबसे बेस्ट दोस्त को ट्रस्ट नहीं कर सकते हम अपने जीवन को लेकर। और बहुत यंग थे, 30s ऐसे ही थे वो लोग। एंड एक को घर में जाकर स्टेप कर दी, दूसरे को कार से मार दिया। ये कितनी, क्या हो रहा है हमारे समाज को, क्या हो रहा है हमारे दुनिया में कि इस हद से गुजरने लगे हैं लोग। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी वेरी सैड एक्चुअली। आई होप किसी को इस तरह से नहीं गुजरनी है। सो एनीवे, चलो ये

सुनते हैं, ठीक है? बहुत ही प्यारा संगीत, मुझे बहुत पसंद है। 1973 की फिल्म ब्लैकमेल से ली गई।

बेहद मोस्ट बिलवड रोमांटिक मेलोडीज फ्रॉम द क्लासिक फिल्म ब्लैकमेल 1973 का फिल्म. बहुत ही सूदिंग ट्यून इसकी और हार्टफेल्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव ये सॉन्ग रिमेन हुई है बहुत ही बरसों से एवरग्रीन फेवरेट ऑफ कई जेनरेशंस. ठीक है. हाँ जी, तो एक और बात है, अब ये सब तो सुनने में बहुत कुछ आ रही है मगर अभी एक और प्रॉब्लम आ गई है इस दुनिया में, ये AI जेनरेटेड जो होती है, AI के बारे में ना. तो अब ये लोग गाने भी बनाने लगे हैं AI जेनरेटेड सॉन्ग. बहुत ही एक गाना है जो एक बेहद लोकप्रिय गाना बन चुका है जिसे AI टूल्स के मदद से एक्चुअली इसे कंपोज की गई है और कंपोज करने के साथ साथ इसे एक्चुअली जेनरेट भी किया गया है और ये गाना काफ़ी मशहूर हुई है और बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है. तो चलो इसे मैं आपके लिए पेश करती हूँ और फिर बाद में इसके बारे में कुछ और बातें करेंगे. बेहद लोकप्रिय गाना बन चुके हैं.

हाँ जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता हुआ रूप इंसानों के लिए भविष्य में एक बहुत ही गंभीर जानलेवा यानी लाइफ थ्रेटनिंग खतरा बन सकता है। हाल ही में दी गई एक चेतावनी के अनुसार ये जो टेक्निक की इस अंधी दौड़ को लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक और रिसर्चर्स चिंता जता रहे हैं। इमेजिन दैट, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर ह्यूमंस, ऐसे क्यों बनाते हैं हम भाई कि लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए हमारे ही।

0: हाँ जी, हैरान तो करते ही हैं हमको सुनकर कि ये हमारे जान ही लेने के लिए तैयार होते हैं. सो एनीवे, ये थी शायद आज रात की दो में से आखिरी सॉन्ग, और आखिरी जो दो सॉन्ग उससे पहले वाली गीत, और अब हम इस गीत को छोड़े जा रहे हैं आपके साथ. और यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारा साथ दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आई होगी, और अगले सप्ताह एक बार फिर आपका साथ हो लूँगी मैं रविवार को, और 5 से 7 बजे तक आप सुन रहे थे अभी, और सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम.
1: या मैं शाम को आ रहा हूँ, और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में तीन तीन गाने फाइनल.
0: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहिए और औरों को भी खुश रहने का मौका दीजिए, ठीक है? बी नाइस टू पीपल, बी गुड टू देम. थैंक यू.

जब सैटरडे गुजरता है तो उस हिस्से में सिर्फ संडे आता है। उस संडे को हम ये सोच सोच के परेशान होते हैं कि यार कल मंडे है, तो अपने संडे को एक्साइटिंग कैसे बनाया जाए। हाँ चलिए कुछ एक्साइटिंग करते हैं ना, अपनी पसंद के गाने को सुनते हैं रेडियो पर, आपका संडे खास हो जाएगा। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फरमाइशी गीत। जी हाँ, आप अपनी फरमाइश भेजिए और हम वो गाना आपके लिए प्ले करेंगे। तो रेडियो प्रस्थानी पर हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए और अपनी फरमाइशों को भेजने का सिलसिला शुरू कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूँ सताक्षी आपके साथ आपके अपने रेडियो प्रस्थानी पर। आइए इस गाने के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत और भेजते रहिए अपनी फरमाइशें।

फरमाइशी गीत इसी सफर को आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं दोस्तों रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। और अभी वक्त है आज की पहली फरमाइश को लेने का, यानी आज की पहली फरमाइश की ओर बढ़ने का। तो आज ये जो पहला मेल हमें आया है ये है कौशिक, और कौशिक ने हमें लिखा है मेलबर्न से आज का पहला मेल। और आप लिखते हैं कि सताक्षी फरमाइशी गीतों में आज मैं वो गाना सुनना चाहता हूँ जो हम 90s के बच्चों के लिए बड़ा ही खास था। उस वक्त प्राइवेट एल्बम्स नए नए आने शुरू हुए थे, तो उन एल्बम्स में हमें एक पूरी स्टोरी दिख जाया करती थी। और इस बीच आया था सोनू निगम का दीवाना, और देखते ही देखते ये गाना लोगों की जुबां पे छा गया था। तो प्लीज आज दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए इस ट्रैक को हम सबके लिए प्ले कर दीजिए। ये गाना तो वाकई इतना लाजवाब हुआ था कि लोगों की जुबान से उतरता नहीं था। तो चलिए आपको सुनवाते हैं अभी रेडियो प्रस्वानी पर दीवाना तेरा तुझे ही बुलाए, सोनू निगम की आवाज में, जिसका म्यूजिक दिया है साजिद वाजिद ने और इसे लिखा है फैज अनवर ने। आइए 1999 में रिलीज हुआ ये एल्बम सुनवाते हैं आपको। इंजॉय कीजिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: So, दोस्तों, फरमाइशी गीत आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर. हम जानते हैं कि आप भी अपनी पसंद के गानों को इस वक्त रेडियो प्रस्थानी पर सुनना चाहते हैं, तो हमें लिखिए हमारे रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज पर अपनी पसंद के ट्रैक्स, वो गाने जो आप यहाँ पर प्ले करवाना चाहते हैं और जिसे डेडिकेट करना चाहते हैं, उनका भी नाम आप हमें लिखकर भेज सकते हैं. फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आइए चलते हैं आगे. स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी, सताक्षी है आपके.

पूर्णिमा ने किया है हमें आज का अगला मेल और आपने हमें लिख भेजा है ब्रिस्बेन से। और पूर्णिमा ने ये मेल किया है अपने हस्बैंड के नाम। आप लिखती हैं, याद है जितिन, हमारी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है और इस महीने में पिछले साल हम पहाड़ों के बीच में थे और खूबसूरत वादियों का मजा ले रहे थे। और याद है तुम्हें कि किस तरह से तुम रील्स पर एक ही गाना लगाते थे हम लोगों की, हुस्न पहाड़ों का। तो चलो आज कोशिश करती हूँ कि रेडियो प्रस्वानी पर ये गाना तुम्हें दोबारा सुनवा कर हम अपनी यादें ताजा कर पाए। तो भाई लीजिए, आपकी यादों को ताजा करते हैं और जतिन के जहन में ये यादें बिल्कुल ताजा होने वाली हैं, क्योंकि अब हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली से हुस्न पहाड़ों का। लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर साहब ने इस गाने को गाया है, जिसका म्यूजिक है रविन्द्र जैन साहब का और इसके लिरिसिस्ट भी रविंद्र जैन जी। राजीव कपूर और मंदाकिनी पर यह गाना फिल्माया गया। इंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: सुबह से शाम तक
1: When I will dance, my dance shall speak for me.
0: शाम से रात्रि तक
1: Superb, superb, fabulous, outstanding.
2: नहीं ऐसे नहीं, खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा.
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान.
3: हिल मत चल.
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा. ओके
4: वेलकम बैक. आपके वीकेंड को आपके लिए खास बना रहे हैं, संडे को आपके लिए स्पेशल बना रहे हैं हम रेडियो ब्रिजवानी पर, क्योंकि आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत और इस सफर में आपकी हम सफर सताक्षी आपके साथ है. तो भाई फरमाइशी गीतों में अगला मेल किसका है, आई नो आप भी जानना चाहते हैं, लेकिन इस अगले ट्रैक के बाद ही पता चलेगा भाई वो गाना. आइए फिलहाल इसको सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी और इंजॉय करते रहिए फरमाइशी गीत.

लगता है हमारे पास आज का ये अगला मेल, और आपने ये मेल अपनी वाइफ के लिए किया है, शांति प्रिया के लिए, और आप लिखते हैं कि सताक्षी, आई होप कि मेरा ये मेल शामिल हो, और मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे 20 दिन 25 दिन कभी कभी एक महीना भी अपने घर से अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, और मुझे कल सुबह वापस निकलना है अपने काम पर, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं गाना अपनी वाइफ शांति को डेडिकेट करूँ, तो प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए तो चलूँ। हाउ स्वीट यार, बहुत ही प्यारा गाना एक तो आपने चूज किया है, और दूसरे परिवार से दूर जाना भी एक मजबूरी हो जाती है क्योंकि काम भी जरूरी है, तो बस हम आपको रोकेंगे नहीं, और तो चलूं ये गाना हम जरूर प्ले करेंगे। रूप कुमार राठौर साहब की आवाज में है, अनु मलिक इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं दोस्तों, और जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा है। बॉर्डर फिल्म से ये गाना है, सुनील शेट्टी इस गाने में नजर आ रहे हैं, और इस गाने को लीजिए आप, इंजॉय कीजिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन पर, और फरमाइशी गीतों में कुछ शानदार गाने मेरा और आपका साथ इस वक्त निभा रहे हैं, और इस खूबसूरत वक्त को आइए और खूबसूरत बनाते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। लेकिन अगर आपको अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है तो लिख भेजिए 1206-498-8346 पर, या फिर bulamastiradio@gmail.com पर। इस अगले ट्रैक के साथ आगे चलते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्वानी।

अगला मेल हमारे पास है और ये जो मेल मेरे सामने इस वक्त है ये है कृति का और आपने हमें लिखा है वैंकूवर बीसी से और आप लिखती हैं सताक्षी आज ये मेल मैं उसे करना चाहती हूँ डेडिकेट जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है लेकिन पता नहीं किस एटीट्यूड में वो बंदा रहता है पर अगर कुछ भी कहिए वो कितना भी एटीट्यूड दिखा ले कितना भी मुझसे दूर जा ले लेकिन भाई मोहब्बत तो मुझे उससे बहुत है तो सताक्षी प्लीज़ आज

मेरे दिल का हाल बयां करता हुआ एक गाना सनम तेरी कसम से प्ले कर दीजिए, कितने भी तू कर ले सितम। भाई कृति, आपके लिए ये गाना हम जरूर प्ले करेंगे, लेकिन भाई प्यार में ये जो एटीट्यूड दिखाने वाले लोग होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आते हैं। भाई जब इश्क है तो फिर किस बात की तकलीफ, है ना? फिर तो मतलब इश्क को जीना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिनको इश्क नसीब होता है। तो सनम तेरी कसम ये गाना जो है, ये आपकी कहानी को बहुत अच्छी तरह बयां कर रहा है। 1982 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना है। आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक और गुलशन बाबरा इसके लिरिसिस्ट हैं। कमल हसन और रीना रॉय पर यह गाना फिल्माया गया है जो अभी आपके लिए प्ले होने जा रहा है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनती रहिए फरमाइशी गीत।

रुखसाना का आज का ये अगला मेल है मेरे सामने और आपने हमें लिखा है दिल्ली से। और रुखसाना कहती हैं कि मुझे गजलों का बहुत शौक है सताक्षी, और जगजीत सिंह साहब की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और आप लिखती हैं कि फिल्म तुम बिन से प्लीज मेरे लिए प्ले कर दीजिए कोई फरियाद तेरे दिल में रुकी हो जैसे। बहुत ही खूबसूरत गजल आपने पसंद की है भाई, कोई फरियाद, बड़ा ही प्यारा इसका एक एक वर्ड है। और इसे प्ले करना मतलब हमारे लिसनर्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। आइए सुनिए इसे और हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी की।

राहुल ने किया है हमें आज का अगला मेल और आप कहते हैं कि आप दिव्या भारती के बहुत बड़े फैन हैं और उनकी आखिरी फिल्मों में से एक फिल्म थी रंग। सो प्लीज अगर हो सके तो इस फिल्म से मुझे सुनवा दीजिए, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। वैसे ये गाना जो है ये दिव्या भारती के आप फैन तो हैं भाई, लेकिन ये गाना दिव्या भारती पर फिल्माया नहीं गया है। जितेंद्र और अमृता सिंह जो कि उनके पेरेंट्स बने थे और बाद में अलग हो जाते हैं, आयशा जुल्का और दिव्या भारती दोनों के पेरेंट्स होते हैं ये, तो उन पर ये गाना फिल्माया गया है। फिलहाल आपने जिस गाने की फरमाइश की है हम आपके लिए वही ट्रैक प्ले करेंगे। जितेंद्र और अमृता सिंह स्क्रीन पर हैं, एंजॉय कीजिए रंग फिल्म से तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। बहुत ही प्यारा और 90s का सबसे खूबसूरत गानों में से एक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी।

आनंद राज का है हमारे पास अगला मेल, और आपने ये मेल हमें किया है वैनकूवर बीसी से, और आप लिखते हैं कि सताक्षी फरमाइशी गीत मेरा बहुत ही फेवरेट शो है और 90s के गानों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। 90s किड्स को वो गाने, वो बदला दौर बड़ा पसंद आता था। एक गाना जो है फिल्म नाराज से मैं आज सुनना चाहता हूँ, अगर आप प्ले कर दें। संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को, है जुबां पर तेरा फिर भी नाम आ रहा है। आइए इस ट्रैक को सुनिए मेरे साथ, और इनोसेंसी सोनाली बेंद्रे इस गाने में नजर आती है तो गाना और भी खूबसूरत लगता है। चलिए बढ़ते हैं इस ट्रैक के साथ आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्थानी, मेरे साथ सुनते रहिए यूं ही फरमाइशी गीत।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: सो लवली, अब हमारे सामने खुला है प्रीति यादव का मेल और आपने हमें लिखा है ब्रिस्बेन से ही, और ये मेल आपने किया है अपने दोस्त सुमित के नाम, और आप लिखती हैं कि सताक्षी, मैं सुमित का बर्थडे पर उसका फेवरेट गाना उसको सुनवाना चाहती हूँ, जागे जागे, फिल्म मेरे यार की शादी है का ये ट्रैक है, और मैंने तो कभी ये गाना नहीं सुना है लेकिन वो हमेशा इस गाने की तारीफ करता है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अगर आपके पास है तो ये गाना ज़रूर प्ले कीजिए। नहीं होगा तो हम आपके लिए ला करके प्ले करेंगे। भाई, हमारे लिसनर्स की चाहत अधूरी रहे ये कैसे हो सकता है। और सच कहते हैं पुनीत, जागे जागे ये गाना जो है मेरे यार की शादी है फिल्म का, बहुत ही प्यारा गाना है, और अभी आपको भी अच्छा लगने लगेगा, है ना। और वैसे भी कभी कभी दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए, गाना खूबसूरत है। सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत, आपकी अपनी रेडियो क्रिस्वानी 107.01 एम पर।

दोस्तों, ये था आज फरमाइशी गीतों पर सताक्षी का आपके साथ एक और बढ़िया सा प्यारा सा और आपकी फरमाइशों भरा साथ। अब वाइंड अप कर दें शो को। चलिए फिर अगले हफ्ते मिलने के वादे के साथ करते हैं आज हमारे फरमाइशी गीतों को वाइंड अप, और कल आपके साथ मुलाकात मेरी जरूर होगी हमारे बाकी शोज की तरह रेगुलरली, लेकिन फरमाइशी गीत और सैटरडे डिलाइट के साथ आपके वीकेंड्स पर आपका साथ निभाऊंगी। आज के इस सफर से अब लेती हूँ विदा। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आने वाले वीक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। नमस्कार।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

ये कैसा नशा है, मैं किस खुमार में हूँ। तू आकर भी जा चुका है और मैं इंतजार में हूँ। आदाब नमस्कार जनाब, मैं तो बस अभी भी आया हूँ। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपसे हर हफ्ते मिलना आप तो एक रिवायत की तरह हो गया है। जब आप और मैं पूरे हफ्ते जिंदगी की कश्मकश से जूझते रहते हैं तो दिल करता है काश सुकून के दो पल मिल जाए। तो जामीन सुर और सांस तैयार है, अपने दिल पर हाथ रखिए और इस सुकून भरे सफर के लिए तैयार हो जाइए। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर निले। आपने ट्यून इन किया हुआ है रेडियो बिस्वानी और ये सुरीला सफर है गजलों का, जिसे हम कहते हैं कारवाए गजल। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। मोहब्बतों में अजब है दिलों का धड़का सा, कि जाने कौन कहां रास्ता बदल जाए। मिले हैं यूं तो बहुत, आओ अब मिले यूं भी, कि रूह गर्मी इन्फास से पिघल जाए। हर एक लहजा यही आरजू यही हसरत, जो आग दिल में है वो शीर में भी ढल जाए।

उस बस्ती से छूटकर तो हर चेहरे को याद किया, जिससे थोड़ी सी अनबन थी वो अक्सर याद आया है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल रेडियो ब्रिस्वानी पर। ऐसा कहते हैं जब आंख बंद कर दिल पर हाथ रखते हैं तो उसका चेहरा सबसे पहले जहन में आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पर एक बात बताता हूँ आपको, आमतौर पर जिसके साथ अनबन होती है आप उसे भी उतना ही याद करते हैं जितना किसी को प्यार में करते हैं, उसकी हर बात की तरफ नजर रखते हैं। क्योंकि हुजूर अनबन भी तो उन्हीं से होती है जिनसे प्यार आप करते हैं, क्योंकि जहां प्यार है वहीं तकरार भी है। उनके रूठने से जिंदगी में एक खालीपन सा आ जाता है ना, कुछ कमी सी महसूस होने लगती है, कुछ खलिश रह जाती है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है। चाहत भी है, सुकून भी है, दिलबरी भी है, आंखों में ख्वाब भी है, लबों पर हंसी भी है। दिल को नहीं है शिकायत किसी के साथ, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। फिलहाल मैं आपके साथ हूं, आपका रेडियो हम सफर नीले, और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, आप रेडियो ब्रिस्वानी पर हैं। अजमतों के बोझ से घबरा गए, सर उठाया था कि ठोकर खा गए, कैद खाने से रिहाई यूं मिली, हौसले जंजीर को पिघला गए, एक नई उम्मीद के झोंके मेरे पांव के छालों को फिर सहला गए, उन बुतों में जान हमने डाल दी, दश्ते तन्हाई में जो पत्थरा गए।

मोहब्बत के लिए खूबसूरत होने की कैसी शर्त? इश्क हो जाए तो सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। ये बात आपने भी पहले सुनी होगी, पर कभी आपने इस पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है कि इंसान को जब प्यार हो जाता है तो पूरी कायनात खूबसूरत लगने लगती है? मुझे लगता है कि जब आप खुश होते हैं, किसी दूसरे शख्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, अपने आप में ज्यादा गुम रहते हैं, तब आप किसी भी शख्स की बुराई या कमियों को बड़ी आसानी से दरकिनार कर देते हैं। जजमेंटल नहीं होते आप तब, क्योंकि आप दिल से खुश होते हैं। इसलिए जनाब, मेरा कहना मानिए, अपनी जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, फिर देखिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत लगेगी। वरना अभी जो पल है उसे खो देंगे और जिंदगी भर उसे खोजा करेंगे। सुनते रहिए कारवाई गजल अपने रेडियो हमसफर निले के साथ। अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, अपनी नजर से कोई मुझे जगमगा गया, महफिल में आज सबकी निगाहों में छा गया। कल तक तो इस हुजूम में मेरा कोई न था, लो आज हर कोई मुझे अपना बना गया। आता नहीं था कोई परिंदा भी आसपास, अब चांद खुद उतर के मेरी छत पे आ गया। जो दर्द मेरी जान पे रहता था रात दिन, वो दर्द मेरी जिंदगी के काम आ गया।

अनकही बातों को कहने से मिलेगा भी क्या, मेरा महबूब तो पत्थर है सुनेगा भी क्या। किस लिए करते हो तामीर हवाओं में महल, कोई ताहश्र जमाने में रहेगा भी क्या। गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, गम की रुदाद मेरे चेहरे पे लिखी तो है, लेकिन अफसोस कोई इसको पढ़ेगा भी क्या। आप सुन रहे कारवाई गजल, कुछ बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दीजिए। जिंदगी तो एक धुआं है, सब फना हो जाएगा। आंखें बंद होने से पहले या दोस्त चल थोड़ी गुफ्तगू कर ले, वो बातें जो अनकही हैं, हो सके तो वो कह दे, बयां कर दीजिए जो दिल में है। क्योंकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस जिद की बात है। एक नादा सा दिल और ढेरा जज्बात है। जज्बात बयां करना, अपने दिल की बात कह देना बड़ा खूबसूरत है, पर उससे भी खूबसूरत वो एहसास है कि कोई है जो हमारी बात को और हमारे जज्बात को समझ रहा है, हमारी बातों के अधूरे सिरों को जोड़कर अनकही बात समझ जाए, खामोशी से बातें चुन सके और उनकी डोरी बनाकर आपकी तारीफ कर सके। मैं आपकी हर अनकही बात को समझ जाता हूं, इसीलिए कारवाई गजल में आपके लिए गजलों और बेहतरीन नगमों का तोहफा लेकर आता हूं। सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी पर, गजले बहार में हूं नीले आपके साथ।

कभी न कभी हर शख्स के जीवन में ये दौर आता होगा जब वो रोशनी से मुंह छुपाकर अंधेरे में चैन पाता होगा। मुश्किल दौर हर शख्स की जिंदगी का वो हिस्सा होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है। वैसे देखा जाए तो हर शख्स की फितरत होती है कि वो हर पल में जिंदगी तलाश करता है, खुशी तलाश करता है। लेकिन जिंदगी खुशी के लम्हों के साथ गम के लम्हे भी समेटे हुए होती है, और गम के लम्हे ही होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका हमदर्द कौन है, कौन है जो आपका हमसाया है। वो तब भी आपका साथ देता है जब आपका खुद का साया भी आपके साथ नहीं होता। ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जिसे भी मिल जाए, उस पर परवरदिगार की रहमत होती है। अपनी नजर से उसने गिराया कहां कहां, जिसको इधर उधर से उठाया कहां कहां। घर में रहें या घर से हों बाहर, यहां वहां नजरों का नीर हमने छुपाया कहां कहां। ताउम्र हर सफर में दिया साथ किस तरह, अफसोस जिंदगी ने सताया कहां कहां। अब तो इसी मकाम से ये देखना भी है, चलता है मेरे साथ मैं साया कहां कहां।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
4: Karwaan.

अनजाने हादसात का खटका लगा रहा। नींद आ रही थी रात मगर जागता रहा। वो सिर फेरी हवा थी आई गुजर गई, एक फूल था जो दिल की तरह कांपता रहा। आप सुन रहे कारवाई गजल, मैं हूं नीले आपके साथ। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इंसान को हर बात की जल्दी क्यों होती है? जब छोटे होते हैं हम, तब बड़े होने की जल्दी होती है। पढ़ते हैं तो कमाने की जल्दी होती है। कमाने लग पड़ते हैं तो जिंदगी को अगले मुकाम पर ले जाने की जल्दी होती है। और सच कहिए तो इस जल्दी जल्दी में जिंदगी जीना कहीं पीछे छूट जाता है। और यकीन मानिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो जब पूछा जाता है कि क्या चाहिए, तो खुदा से बचपना मांग लेते हैं हम। कैसी अजीब सी राय है जिंदगी भी, जो गुजर गया उसे तलाश करती है और जो है उसकी कदर नहीं करती। इस महफिल की शमा को जलाए रखते हुए अगली गजल और नगमे पेश करते हुए आपसे कहूंगा कि बस मैं यूं गया और यूं आया। तब तक यर्ज किया आपके लिए कि मैं क्या था शाखे जर्द का एक बर्गे खुश्क तर, निकला जो आंधियों से तो शोलों से जा मिला। मेरा ही रूप था जो पसे पर्दाए वजूद, नफरत से सारी उम्र मुझे देखता रहा। तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, तेज आंधियों में गर्द सफर तक न बच सकी, मत पूछ मुझसे अब मेरे दामन में क्या रहा। पानी के आर पार निगाहें न जा सकी, दरिया एक और भी तहे दरिया छुपा रहा।

प्यार कभी एक तरफा होता है ना होगा, दो रूहों के मिलन की जुड़वा पैदाइश है। ये प्यार अकेला नहीं जी सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो लोगों में। आप हैं अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। वैसे देखा जाए तो एक तरफा प्यार भी प्यार ही होता है, उसमें भी तड़पन होती है, दर्द होता है। लेकिन एक बात जरूर है, वो शख्स हमेशा खुश दिखना चाहता है, वो जिसे चाहता है उसे जताना चाहता है कि उसके साथ होने से कितनी खुशी मिलती है उसे। प्यार में रूठना मनाना तकरार होती है, पर एक तरफा प्यार में तकरार की जगह नहीं होती। दिल की बात हो, इजहार हो, इकरार हो, सभी बातों को संगीत के जरिए बखूबी बयां किया जा सकता है, है ना। संगीत में वो जादू है जो हर जख्म पर मरहम का काम करता है, हर टूटे दिल का सहारा बन जाता है संगीत। तो अब इस सुरीले सफर को आगे बढ़ाते हैं, सुनते रहिए कारवां गजल। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं, वो पिछली रुत के साथी अब के बरस में तन्हा हूं। तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूं, मुझसे आंख मिलाए कौन, मैं तेरा आईना हूं। मेरा दिया जलाए कौन, मैं तेरा खाली कमरा हूं। तू जीवन की भरी गली, मैं जंगल का रास्ता हूं, अपनी लहर है अपना रोग, दरिया हूं और प्यासा हूं। आती रुत मुझे रोएगी, जाती रुत का झोंका हूं। अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं।

किनारा मिला जो किनारा नहीं था, बहाना था कोई सहारा नहीं था, यही एक दिल जिसको समझे थे अपना, न जाने किसका था हमारा नहीं था। आप सुन रहे कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं। तभी कहते हैं कि जब कोई सामने से इग्नोर करने लगे या दिल कुछ और जवाब देने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि जिंदगी की राह में थोड़ा मुड़ने का टाइम आ गया, रुक कर सोचने का टाइम आ गया। वैसे भी जल्दी करके कोई क्या पा लेगा, थोड़ा रुक कर चलें तो धोखा शायद कम मिलेगा। अपनी किस्मत पे नाज करते गुरूर होता, गर उनके लबों से हमारा मस्कूर होता। गरचे मैंने छुपाया था राज़े दिल तुमसे, डर था तेरी निगाह में ये ना कसूर होता। कहना था पर न कहा इसमें खता मेरी थी, कहता दर्द हिज्र भी जो न मजबूर होता।

जागे हैं देर तक, हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे ना हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल, में हूं आपके साथ। हर शख्स की जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब उसकी जिंदगी में ख्वाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ख्वाबों से भरी जिंदगी में बड़ी सच्चाई होती है, बड़ी रूह होती है, बड़ी सोलफुल होती है ये जिंदगी। प्यार इंसान को ख्वाब देखना सिखाता है, ख्वाब की तामील हो ना हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि होठों पर लिए हुए दिल की बात हम जागते रहेंगे और कितनी रात हम। बेहतर है कह दें अपने दिल की बात तो सुकून मिल जाए। नहीं, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, तुमने मुझे देखकर जाने किस तरह सोचा होगा, काश मैं शक्ल सूरत में थोड़ा और होता। खुदाया क्या हम न पाते अपनी मोहब्बत को, अगर हमें अपनी वकालत का शऊर होता। हम तुम मिल ही जाते किसी मोड़ पर एक रोज, जो इश्क में वसलत और कुर्ब का दस्तूर होता। है आलम में रंग नए पुराने यादों के, तुम भी होते परेशान तो मजा जरूर होता। बहुत तड़प तड़प के मैंने यह गजल लिखी है, काश मेरी किस्मत में जमाले हूर होता।

जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिलें, जरूरी नहीं है इश्क में बाहों के सहारे भी मिलें, किसी को जी भर के महसूस करना भी मोहब्बत है। आप और हम जुड़े हुए हैं प्यार के बंधन में। देखा जाए तो प्यार और अनुराग में थोड़ा अंतर होता है। अनुराग में पैशन होता है, चीज को अपना बना लेने की जिद होती है। प्यार में बंधन नहीं होता, जिद नहीं होती। इसीलिए मेरा और आपका रिश्ता पाक है, क्योंकि इसमें किसी तरह की जिद नहीं है, सिर्फ अपना बना के रखने की जिद नहीं है। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। ये सफर अब मुकम्मल होने को है। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात अपने रेडियो हम सफर निले से। दीजिए मुझे इजाजत, बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। लेकिन जाते जाते कहूंगा कि कल की सोचो तो भली ही सोचो, सोच अच्छी है तो अच्छा होगा। रब्त का फल है, जरा सब्र रखो, वक्त के साथ ही मीठा होगा। एक ही शर्त पे बांटूंगा खुशी, तेरे गम में मेरा हिस्सा होगा। मेरी कोशिश है अमल उस पे करूं, मैंने गजलों में जो लिखा होगा। खुदा आपका मुहाफिज रहे। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: सुबह से शाम तक
2: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
1: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
3: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
3: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
2: या
3: Okay, soft.
2: Yeah, soft.
3: Yeah.
2: Up loud. Yeah.

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
2: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
1: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
2: हिल मत चल
1: अरे बगैर हिल चल कैसे होगा ओके
3: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
4: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
3: ऐसा क्या खास है वहाँ
4: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
3: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
4: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, कोई अच्छा सा lawyer suggest करो ना. ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए.
3: अर्शाद lawyers है तुम्हारी problem का solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं. और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे. अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो.
2: अरे वाह, इनका पता बताना.
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग. Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रणाम और सुप्रभात। हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम आराधना में आप सभी साधकों और श्रोताओं का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। मैं हूँ आराधना के सफर में आपकी साथी सताक्षी, और आज है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर हमारी साधना, हमारी प्रार्थना समर्पित है विघ्नहर्ता बुद्धिदाता श्री गणेश जी के चरणों में। आइए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं बप्पा के मंगलाचरण और पवित्र भजनों के साथ।

एक्सप्रेस वाणी 107.1 AM पर आप सुन रहे हैं आराधना, आपके साथ सताक्षी है। और आज आराधना में हम बात कर रहे हैं बप्पा के दिव्य स्वरूप की। गणेश जी केवल पूजा के प्रथम देव नहीं हैं, वो चेतना और आत्मशुद्धि के प्रतीक हैं। जब हम ओम एक दंताय वक्रकुंड धीमहि का जाप करते हैं तो हमारे भीतर का भय और अज्ञान समाप्त होने लगता है। आज अपने दिन की शुरुआत किसी के प्रति द्वेष रखकर नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम के साथ कीजिए।

शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि किसी भी नए विचार या कार्य की शुरुआत में सबसे पहले बुद्धि और रिद्धि सिद्धि का होना अनिवार्य है। बिना विवेक के शुरू किया गया कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता।

वाणी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आराधना। आराधना में आज आप सुन रहे हैं गणपति बप्पा के कुछ बड़े ही मनमोहक भजन और उन्हीं को आज हम और उन्हीं को समर्पित है हमारा आज का ये आराधना का सफर। एक और गीत के साथ आगे चलते हैं, सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी पर।

ध्यान से बप्पा के स्वरूप को देखा है। उनका हर एक अंग आपको कोई ना कोई शिक्षा देता है, जैसे कि उनका बड़ा मस्तक। गणपति बप्पा का बड़ा मस्तक सिखाता है अपनी सोच को विस्तृत रखो। उनके बड़े कान कहते हैं धैर्य से सुनो और कम बोलो। उनकी छोटी आंखें सिखाती हैं दृष्टि को सूक्ष्म और एकाग्र रखो। और उनका लंबोदर यानी बड़ा सा पेट संदेश देता है कि जीवन के हर सुख दुख और रहस्यों को पहचानना सीखो। बप्पा का हर अंग एक जीवन दर्शन है।

गणपति बप्पा का वाहन यानी मूषक यानी चूहा, उसका भी एक अपना ही अर्थ है। चूहा चंचलता और इच्छाओं का प्रतीक है। जब बप्पा मूषक पर सवारी करते हैं तो इसका अर्थ है अपनी चंचल इच्छाओं पर नियंत्रण पाना। वहीं हाथ में लिया मोदक कठिन साधना के बाद मिलने वाले आत्मानंद और मिठास का सूचक है। अगर मन वश में हो तो जीवन में आनंद ही आनंद है।

तेजस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आराधना। आराधना में आज आप सुन रहे हैं गणपति बप्पा के कुछ बड़े ही मनमोहक भजन और उन्हीं को आज हम और उन्हीं को समर्पित है हमारा आज का ये आराधना का सफर। एक और गीत के साथ आगे चलते हैं, सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी पर।

चलो, हम सभी जीवन में किसी ना किसी चिंता या विघ्न से गुजरते हैं, लेकिन विघ्नहर्ता का नाम ही इस बात का आश्वासन है कि कोई भी बाधा स्थायी नहीं है। अपने सारे तनाव, अपनी सारी परेशानियां आज बप्पा के चरणों में समर्पित कर दीजिए और मन को शांत होने दीजिए।

तेजस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आराधना। आराधना में आज आप सुन रहे हैं गणपति बप्पा के कुछ बड़े ही मनमोहक भजन और उन्हीं को आज हम और उन्हीं को समर्पित है हमारा आज का ये आराधना का सफर। एक और गीत के साथ आगे चलते हैं, सुनते रहिए आराधना रेडियो प्रस्वानी पर।

में क्षमा प्रार्थना का बहुत महत्व है। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम मया, यानी हे प्रभु, जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए मुझे क्षमा करें। आज बप्पा से धन दौलत के साथ साथ सबुद्धि, शांति और अपनों के लिए स्वास्थ्य की प्रार्थना करना न भूलिएगा। रिद्धि और सिद्धि यानी समृद्धि और सफलता अपने आप आपके द्वार पर आ जाएंगी।

श्रोताओं, ये थी आज की आराधना, जिसमें आज हमने गणपति बप्पा के बड़े ही अनमोल भजन भी सुने और एक दंत दयावंत को प्रणाम भी किया। विघ्नहर्ता आपके समस्त विघ्नों को हरें और आपको सद्बुद्धि दें। इसी मंगल कामना के साथ एक बार जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया।

वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्ते, अदाब, सत श्री अकाल और एक बहुत ही ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग। वेलकम टू रेडियो ब्रिस्बानी। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट स्टार जी जानी जैन। और अगर आप सभी अभी कार में हैं, ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, स्कूल ड्रॉप के लिए बच्चों को छोड़ रहे हैं, या फिर आप बस अपनी मॉर्निंग कॉफी के साथ मुझे यानी आपकी दोस्त आरजे चानी जैन को सुन रहे हैं चानी के सफर प्रोग्राम में, सो भाई यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। मंडे को बोरिंग होने की परमिशन तो हम बिल्कुल भी नहीं रेडियो ब्रिस्बानी में देते दोस्तों। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाने आप सभी को सुनने को मिलते हैं, और खास कर कि हमारा सिंपल रूल जो है वो यही होता है, नया वीक है, नई एनर्जी है, और जो कल नहीं हुआ वो आज से शुरू हो सकता है। और आज से दोस्तों गणेश चतुर्थी भी शुरू है, सो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बानी।

वेलकम बैक टू रेडियो बिस्वानी में आप सभी का, और आशा करती हूँ कि आप सभी का वीकेंड जो है बहुत ही अच्छा गया होगा, बहुत एंजॉय आप सभी ने किया होगा। और जी खास करके इतने इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ सभी गए जरूर होंगे और एंजॉय जरूर किया होगा। आशा करती हूँ ऐसा ही ये प्यारा सा जो वीक है, यानी कि आज मंडे है, आज से भी आपका प्यारा प्यारा सा दिन शुरू हो जाए और आप सभी की सारी विशेष जो है वो पूरी हो जाए, यही मेरी आशा है और यही मेरी प्रार्थना है भगवान जी से। तो दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ पर हमेशा की तरह जानते हैं कुछ ऐसे सेगमेंट्स जिसमें कि हम ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की अपडेट्स जानते हैं, न्यूज़ अपडेट्स जानते हैं, एंटरटेनमेंट गॉसिप्स होती है और बहुत सारी बातें, मोटिवेशनल चीज़ें यहाँ पर हम सुनते हैं। यानी अपने इस प्रोग्राम में हम मिक्सचर यानी कि हर चीज़ की तरह जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, बस आप सुनिए ये गीत और उसके बाद आते हैं लौट के, सुनाते हैं आपको ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की अपडेट्स। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

चलिए जी अब बात करते हैं ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहले ब्रिस्बेन लायंस फैंस के लिए एक बिग न्यूज है। ब्रिस्बेन लायंस ने एडिलेड क्रोज को गाबा में 53 पॉइंट से हरा दिया और ये परफॉर्मेंस लायंस के लिए बहुत ही इम्प्रेसिव रही। आपको बता दें कि ब्रिस्बेन ने मैच के स्टार्टिंग मोमेंट्स में ही ट्रेमेंडस प्रेशर बनाया और फर्स्ट फ्यू मिनट्स में 5 गोल स्कोर करके फाइनल्स रिकॉर्ड भी क्रिएट किया। तो लायंस फैंस जो है भाई मंडे मॉर्निंग तो ऑलरेडी सेलिब्रेट मोड में होगी है। और AFL फाइनल्स पिक्चर भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। प्रीलिमिनरी फाइनल्स में जो सिडनी है उनका सामना जो है फ्रीमेंटल से होगा, जबकि हॉथॉर्न ब्रिस्बेन को होस्ट करेगा। ब्रिस्बेन लायंस का जो जर्नी है भाई अब और एक्साइटिंग होने वाली है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक, उसके बाद जानेंगे ऑस्ट्रेलिया न्यूज। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्बेन में. ऑस्ट्रेलिया में एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी सामने आया है दोस्तों. साउथ ऑस्ट्रेलिया के कैंकरू आइलैंड पर जो है एक इंडेंजर्ड ऑस्ट्रेलियन सी लॉयन में पहली बार H5 बर्ड फ्लू कंफर्म हुआ है. ये न्यूज़ जो है कन्वर्सेशन एक्सपर्ट्स के लिए कंसर्न का सब्जेक्ट है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन सी लॉयन के पॉपुलेशन लिमिटेड है. अथॉरिटीज वाइल्ड लाइफ हेल्थ को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया सेफ्टी और यंग यूजर्स को लेकर भी डिस्कशन कंटिन्यू है. आपको बता दें कि पर्टिकुलरली जो टीनेजर्स हैं उनके सोशल मीडिया यूज और रेगुलेशन को लेकर. तो पेरेंट्स के लिए भी ये रिमाइंडर है, टेक्नोलॉजी यूजफुल है लेकिन ऑनलाइन सेफ्टी और हेल्दी स्क्रीन हैबिट्स भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं. आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन.

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, मेरी प्यारी ब्रिस्वानी फैमिली, एक छोटी सी बात आज अपने साथ जरूर रखिएगा। आपको पूरी जिंदगी एक दिन में फिक्स नहीं करनी, बस आज का दिन थोड़ा सा बेटर बनाना है। अगर मंडे मॉर्निंग में आप ऑलरेडी टायर्ड फील कर रहे हैं दोस्तों, तो डोंट वरी, आपको परफेक्ट मंडे नहीं चाहिए, आपको बस वन गुड डिसीजन चाहिए। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, एक पॉजिटिव थॉट, एक इम्पॉर्टेंट कॉल और एक पेंडिंग काम कंप्लीट, बस। और शाम को जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो लगेगा यस, आई एक्चुअली मूव फॉरवर्ड टुडे। सो ब्रिस्बेन, डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, स्टार्ट एंड मोटिवेशन विद फॉलो। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इस गीत के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब थोड़ा सा कनेक्शन इंडिया से भी बना लेते हैं भाई। इंडिया के स्पोर्ट्स फैन के लिए एशिया कप का एक्साइटमेंट पीक पर है। इंडिया और श्रीलंका के बीच एशिया कप फाइनल शेड्यूल्ड है, जहां पर इंडिया अपना 8th एशिया कप टाइटल टारगेट कर रहा है। क्रिकेट फैंस के लिए आज का दिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, और ब्रिस्बेन में रहने वाले इंडियन लिसनर्स, हमें पता है भाई, डिस्टेंस चाहे कितना भी हो, क्रिकेट का एक्साइटमेंट इंडिया से ब्रिस्बेन तक पहुंच ही जाता है। आप बताएं भाई, इंडिया का फेवरेट क्रिकेटर कौन सा है भाई आपका, हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। उतने में आइए सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक है जी रेडियो बिस्वानी में और अब टाइम है फिल्मी तड़के का। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक बिग फैमिली अपडेट सामने आया है। वही पॉप सुपरस्टार लेडी गागा और माइकल पोलंस्की पेरेंट्स बन गए हैं। वही एंटरटेनमेंट वीकली के अकॉर्डिंग कपल ने अपने फर्स्ट चाइल्ड का वेलकम भी किया है। और बर्थडे कैलेंडर की बात करिए तो सितंबर 13-19 के वीक में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के कई फेमस नेम्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग निक जॉनस, जीन स्मार्ट्स, एमी और जेसन जैसे दिग्गज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो भाई ब्रिस्बेन, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ ब्रेकफास्ट करने का भी चांस मिले तो हु वुड यू चूज? बॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड स्टार, सिंगर, क्रिकेटर्स, कुछ भी हो सकती है भाई, आपकी च्वाइस है, हमें जाननी है, जल्दी से मैसेज करके जरूर बताइएगा। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

एंड जस्ट लाइक दैट ब्रिस्बेन हमारा मॉर्निंग राइड ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो गया. सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर मंडे मॉर्निंग विद मी यानी जानी राइट हियर ऑन रेडियो ब्रिस्बेनी. आज का दिन बिजी होगा, ट्रैफिक होगा, मीटिंग्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कोर्स होगी, बट एक चीज याद रखिए, लाइफ को सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, थोड़ा सा इंजॉय भी करना है. स्माइल कीजिए, अपने लव्ड वन को एक स्वीट मैसेज जरूर भेजिए और भाई अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए. मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सब सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेनी. सो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, ड्राइव सेफ एंड ब्रिस्बेन हैव अ ब्यूटीफुल मंडे. टेक केयर, बाय बाय.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701 एम। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। हुती विद्रोहियों की बढ़ रही ताकत, सऊदी अरब पर किया नए हमलों का दावा। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले करने का दावा किया। वहीं यमन की सऊदी समर्थित सरकार ने लाल सागर के तट पर विद्रोहियों की तेजी से बढ़त को दर्दनाक घटनाक्रम बताया है। सरकार के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच ये एक नया मोर्चा बन सकता है। होर्मुज में ईरानी जहाज को बनाया निशाना, एक की मौत, तीन घायल। अमेरिका की चुप्पी से बढ़ा सस्पेंस। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के एक वाणिज्यिक जहाज को निशाना बनाए जाने की खबर है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक स्क्वायम द्वीप के पास जहाज पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। सरकारी मीडिया ने बताया कि घटना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नजदीक हुई। हालांकि जहाज को किसने और किस हथियार से निशाना बनाया, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। तीन दिन चले ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने की 15 द्विपक्षीय बैठकें। चिनफिंग, पुतिन और यूएन चीफ संग हुई अहम चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट के दौरान तीन दिनों में देश और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। इसके अलावा दुनिया के नेताओं और इंटरनेशनल संस्थाओं के नेताओं के साथ कई अलग अलग बातचीत भी की। बिजी डिप्लोमेटिक शेड्यूल में पीएम मोदी रशिया, चाइना, ईरान, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ और दूसरे इलाकों के नेताओं के साथ सीधे जुड़े। चर्चाओं में बायलैटरल रिश्ते, ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट, कनेक्टिविटी, जरूरी मिनरल्स और बड़े रीजनल और ग्लोबल डेवलपमेंट शामिल थे। ब्रिक्स को एआई ओपन सोर्स देगा चाइना, ट्रंप की बंदिशों के जवाब में चिनफिंग का बड़ा दाव। ऐसे समय जब ट्रंप प्रशासन अमेरिकी एआई कंपनियों को सिर्फ अमेरिकी हितों के इस्तेमाल के लिए दबाव बना रही है, तब चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अपने देश की एआई कंपनियों की प्रौद्योगिकी को ज्यादा समावेशी बनाने की पेशकश की है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में राष्ट्रपति चिनफिंग ने 5 ठोस पहलों का ऐलान किया। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रस्ताव की हो रही है जिसमें ब्रिक्स देशों के लिए एआई ओपन सोर्स समुदाय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है। प्रौद्योगिकी और दुर्लभ खनिजों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल खतरनाक, ब्रिक्स सम्मेलन के समापन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल के दिनों में चाइना ने दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति को रोक लिया था, जाहिर तौर पर उसमें राजनीति भी थी। अब पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों को इसके प्रति आगाह किया है। 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक तनावों की वजह से आम जनता के जनजीवन पर होने वाले असर की भी बात कही। ब्रिक्स सम्मेलन के सफल आयोजन और इसके तहत तय कार्यक्रमों के जरिए विकासशील व गरीब देशों को फायदा पहुंचाने की अपील करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण, स्वास्थ्य, सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर तत्परता से एक दूसरे के सहयोग की व्यवस्था बनाने की अपील की। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी शुभ हो दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, जैसे आप जानते हैं दोस्तों कि लॉर्ड गणेश जो है ही रिप्रेजेंट्स विजडम, गुड बिगनिंग एंड द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। हिज सिग्निफिकेंस इज नॉट ओनली रिलीजियस, ईच पार्ट ऑफ हिज फॉर्म राइट है, कुछ उसमें क्या बोलते हैं, एक लेसन है। ईच पार्ट ऑफ हिज फॉर्म ऑफर्स अ लेसन फॉर एवरी डे लाइफ। और व्हाट डू यू कॉल दैट व्हेन यू हैव अ नॉट कम ऑन व्हाट इज दैट वर्ड आई एम लुकिंग फॉर एनीवे, उसका जो बड़ा सर है, बिग हेड, रिमाइंड्स अस टू थिंक वाइजली, ठीक है। और बड़े बड़े कान है जो वो सिखाता है हमको कि कुछ भी अगर हम सुनते हैं तो उसको बहुत केयरफुली हम सुने, ठीक है। और जो उनके छोटे छोटे आईज है, ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन। देखो जब हम कॉन्सेंट्रेट कुछ करते हैं, माँ कैसे छोटा कर लेते हैं ना,
1: बिकॉज यू कॉन्सेंट्रेटिंग एंड फोकसिंग।
0: उसका जो एक एक टस्क है, जो एक ही जो है, सिंगल टस्क है ना, एक रहता है। टीचर्स अस टू रिटेन व्हाट इज गुड एंड लेट गो ऑफ व्हाट इज अननेसेसरी। लाइफ में दोस्तों आप बैगेज मच नहीं कैरी करो, ठीक है। जो जो जो कुछ आपके लिए ठीक है, जो कुछ आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में, उसका चिंता क्यों करते हैं, उसको भूल जाओ, ठीक है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दैट। और उसका जो बड़ा सा पेट है, रिप्रेजेंट कामली एक्सेप्टिंग लाइफ प्लेजेंट एंड एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। और ये भी कहा गया है कि अगर कुछ आप सुन भी लिया, कुछ बुरा चीज या कुछ, तो पेट में पचा लो, मुख तो है नहीं बहुत। समझ गए? और सो यू जस्ट कीप इट एंड डाइजेस्ट इट, यू डोंट हैव टू शेयर इट, ओके। और उसका जो हिज जो है
1: ट्रंक
0: सिम्बलाइजेस रेस्टलेस डिजायर्स विच विजडम मस्ट कंट्रोल, ओके। सो दैट इज वाई गणेश इज रिमेम्बर्ड बिफोर बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, या कुछ को शादी से करने से पहले, या कुछ बिजनेस अगर आप शुरू करने वाले हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो, तो गणेश जी को सबसे पहला उनको हम सोचते हैं, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, ठीक है। सो और गणेश जी ये नहीं कहते हैं कि आपको मैं जिंदगी में आपको कभी कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा अगर आप मुझसे प्रे करते हो, ठीक है। वो क्या देता है हमको दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये मत सोचो गणेश जी को हम कर लिया पूजा और सब चीज ठीक रहेगा, नहीं, सब चीज ठीक नहीं रहेगा दोस्तों। क्योंकि गणेश जी हमको जगाना चाहते हैं और कहते हैं कि देखियो कि आपको विजडम मिला है और आपको भी करेज मिला है टू ओवरकम दैट, यूज दैट,
1: एग्जैक्टली
0: आपको रास्ता दिया गया है सब कुछ, सो यूज दैट। अब डोंट बी लेजी एंड से अरे मैं तो पूजा कर लिया, भगवान सब मेरा पार करेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता दोस्तों। भगवान ने आपको दिया है सब कुछ जो जंग लड़ने के लिए, ठीक है, ही गिविंग यू द वेपन, जैसे कि बुद्धि है, ये सब चीज है, ओके। तो ये बात है। और सो चलिए, आज का दिन बहुत महादिन है दोस्तों, और एक बार फिर हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। और जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि आज एक इंटरव्यू रहेगा 7:30,
1: सो डू वी डू बर्थडे नाउ देन?
0: या वी डू द बर्थडे नाउ, या दिस इज अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट अ थर्ड जनरेशन ऑस्ट्रेलियन इंडियन, राइट। कुछ बहुत बातें बताएंगे, कैसा उनका जिंदगी रहा और थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो सुनिए 7:30 से दोस्तों, ये रहेगा कुछ शायद 15-20 मिनट्स का, आपको बहुत जानकारी मिलेगा कि फर्स्ट इंडियंस जब आए थे यहाँ पर, वैसे तो हम आई एम व्हाट फर्स्ट सेकंड एम आई एम सेकंड जनरेशन इंडियन इन फिजी।
1: आर यू?
0: या
1: ओके।
0: इफ पीपल दैट केम, इफ यू टेक देम देन आई एम थर्ड, बट फ्रॉम देयर माय फादर देन आई एम, would I call that second or third? Second, right?
1: No, you the third.
0: Third.
1: Yeah.
0: जब आए थे वो first generation, right?
1: Yeah.
0: Then second.
1: Yeah.
0: My parents, then I was third. Yeah. Okay. All right.
1: I think we are fifth generation.
0: You are? Okay.
1: I think right. so, because okay. we went in 1860.
0: And then the was smiling.
1: Hey?
0: No, somebody. Somebody said good profession.
1: Good?
0: मैं पंडित बन सकता था लेकिन मैं कभी कभी अपना लास्ट नेम भूल जाता हूँ. नित्या भाई ने मुझसे कहा था कि जस्टिस जी यू शुड बिकम अ पंडित. आई से नित्या भाई सामने मेरा कौन बैठा रहता मैं उनका नाम भूल जाता हूँ कभी कभी. बहुत जोर से हंसा उन्होंने. नित्या भाई इज रिकूपिंग. ओके
1: Okay, so today is the 14th of September, so yep. happy birthday if it's your birthday today,
0: okay.
1: and a happy anniversary if it's your anniversary today. We hope you have an absolutely beautiful day. Mm-hmm. I think I will play a song while we get ready.
0: Okay.
1: Yeah?
0: All right.
1: Okay.
0: Let's do that.

0: और देखिए दोस्तों, समय कम हो रहा है और पंडित सुरेश भी हमारे साथ है। पंडित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। राम राम।
1: नमस्कार नमस्कार जी जतीश जी, अपना रेडियो थोड़ा धीरे कर लेते हैं
0: जी।
1: हाँ जी, आपको हाँ सुन रहे थे पूरी प्रोग्राम, जो क्या नाम था, हमको नाम इतना जल्द हम भी आप
0: चार्ज।
1: जी हाँ, तो इनके साथ बातें जो हुई और इन्होंने जाते जाते जो रामचंद्रा के स्नेक मैन के बारे में बोला
0: जी,
1: तो हम भी जब आईटीज में हम माइग्रेट हुए ऑस्ट्रेलिया, तो स्विच में रह रहे थे उस समय रामचंद्रा जिंदा था और उनका भी वो प्रोग्राम हम देखे और उसके बाद वो उसका अंतिम हुआ
0: जी।
1: तो लोग हमसे पूछते थे कि आर यू रिलेटेड टू रामचंद्रा, क्योंकि हमारा ना वैसे तो और कुछ नाम भी है लेकिन सुरेश चंद्रा ही नाम से
0: जी हाँ जी, जी जी जी जी अच्छा,
1: तो
0: जी
1: हमसे अक्सर पूछते थे डू यू आर यू रिलेटेड टू द स्नेक मैन,
0: वेरी फेमस मैन ना।
1: हाँ हाँ, उसका बहुत हाँ, ही वाज द इन्वेंटर ऑफ वेनम।
0: हाँ हाँ, आप तो मालूम होगा, आप तो उसी फिल्म में थे
1: जी। हाँ, हाँ।
0: तो केमिकल आई मीन या सो बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद पंडित जी, आपका शेयर किया आपने।
1: हाँ, पूरे प्रोग्राम सुने, बड़ा
0: हाँ
1: ध्यान लगा।
0: मेरे पास काफी टेक्स्ट आने लगे हैं कि लोग बहुत पसंद किए जो हिस्ट्री
1: ऐसा ही है। और एक बार जो जितेंद्र देव प्रोग्राम कर रहा था ना
0: जी,
1: इंटरव्यू करते थे
0: जी। ओ हाँ, जब हाँ हाँ
1: हाँ, तो जितेंद्र जी ने हमारा जब इंटरव्यू किया तो बोला कि फुफा ये तो एक प्रोग्राम में नहीं, हमारा दो सीरीज रन की दो। तो ऐसे ऐसे लंबे लंबे कहानियां सभी के पास है ना।
0: हाँ वही तो। हाँ, और चार्ल्स तो अब जाने वाले हैं यहाँ ब्रिस्बेन से, तो इसीलिए हमने बिकॉज इज ट्रेवलिंग अलॉट। तो देखिए, उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है कि एज इज नथिंग, इज जस्ट यू हैव टू प्रॉब्ली स्लो डाउन, बट स्टिल इट डजंट लिमिट यू फ्रॉम डूइंग क्या करना चाहते हैं ना।
1: जी हाँ, यही हमारे साथ भी होता है, बच्चे बोलते हैं स्लो डाउन कम डाउन।
0: बोलने दो बच्चों को।
1: जिंदगी तो चल रहा है
0: जी जी जी।
1: तो हम वही हमने सोचा कि आपसे भी बातें कर लें कि रामचंद्रा के रिलेटेड तो हम नहीं है लेकिन नाम से रिलेटेड हैं।
0: कौन जानता, कौन जानता पंडित जी, शायद आप होंगे
2: पंडित जी, शायद चेक
0: आप डीएनए चेक करो, शायद होंगे आप रिलेटेड।
1: बहुत दिन से सोच रही है लेकिन किए नहीं
2: अभी तक। या मी टू, मे बी
0: मे बी। मेरा तो बड़ा गंभीर होगा भाई,
2: वी बोथ सपोज्ड टू चेक।
0: ओके, मुझे मालूम नहीं मैं आता हूँ या जाता हूँ। आता माता कुछ नहीं मालूम। ओके पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी,
2: हरिओम पंडित जी।
0: तो चलिए दोस्तों, समय भी हमारा अब हो चुका है यहाँ से ऑलमोस्ट जाने को, 10 मिनट है कुछ। और लेट्स सी व्हाट यू
2: हैव, कैरी ऑन विद द सॉन्ग,
0: कैरी ऑन व्हाटएवर यू वांट टू प्ले। या
2: नो, कंटिन्यू द सेम सॉन्ग, विल कैरी ऑन।

0: चलते हैं दोस्तों, अब आखिरी गीत है आप सभी के लिए और बहुत से लोग टेक्स्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि ये बहुत अच्छा हिस्ट्री था और यस
1: जस्ट सो इंस्पायरिंग
0: फ्रॉम देवकी फैमिली,
1: सो इंस्पायरिंग.
0: या वन आस्क्ड इफ चार्ल्स नोज विनोद कुमार In 60s, he used to frequent the restaurant there while he was going to
1: University of Sydney.
0: Mm. Yeah. University of Sydney, very prestigious.
1: University of Sydney.
0: Okay.
1: All right. We'll say goodbye.
0: Yep.
1: No, we'll say namaste, take care, and kabhi alvida na kehna. Okay.
0: Kabhi alvida na kehna.
1: Okay, so we'll see you all tomorrow.
0: Okay.
1: Take care.
0: Take care.

गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गणपति बाप्पा आप सबके घरों में अभी तक आ गए कि नहीं? देखिए भाई, रेडियो प्रस्वानी पर मैं सताक्षी हूँ आपके साथ आज एक बार फिर से आपके अपने ब्रेकफास्ट वाले शो इट हैपेंस में। और आज है गणेश चतुर्थी, यानी विनायक चतुर्थी, यानी कि हमारे गणेश जी का हैप्पी बर्थडे, हमारे बप्पा का बर्थडे। सो आज इट हैपेंस में आपके साथ बहुत सारी बातें होनी है गणपति जी पर और उनके आगमन पर। आपके घरों में अभी तक आए हैं कि नहीं? वैसे मुहूर्त में भी थोड़ा सा वक्त है, तो तब तक कैसे तैयारियां करनी और कैसे उन्हें घर लेकर आना है, ये सारा डिस्कशन जो है वो हम आपसे करेंगे। आज बहुत खास, बहुत ही प्यारा ये सफर है जिसे आपके साथ बांटूंगी, शेयर करूंगी। फिलहाल आगे चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। अभी स्टे ट्यून्ड मेरे साथ, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्पानी पर, और इस सफर में आपकी हम सफर सताक्षी आपके साथ है। सो कैसी है ये मॉर्निंग? आई होप आज बहुत ही पॉजिटिव है। गणेश जी का जन्मदिन यानी गणेश चतुर्थी जो है, सो भाई वो बेबीज जिनका आज बर्थडे है, देखिए मैं बेबीज क्यों कहती हूँ, आपकी भले ही उम्र 80 साल हो, बर्थडे के दिन हर कोई बेबी होता है भाई। तो हाँ, आज चाहे जिंदगी में पहली बार ही सही गणेश जी आपके बर्थडे के साथ मैच हो गए। भाई ये मत कहिए कि आप उनके साथ मैच हुए, वो आपके साथ हुए ना। वो तो एक ही साल आए हैं, अगले साल पता नहीं किस डेट को आए, लेकिन आज का सेलिब्रेशन तो बनता है। वैसे जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, पापा करें कि आप दोनों के जीवन में खुशियां हमेशा बरकरार रहें, और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं आगे इस अगले ट्रैक के साथ। Keep listening to Radio Prasthani 1701 AM।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

गणेश चतुर्थी की आप सभी को एक बार फिर से ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप है सताक्षी के साथ और सुन रहे हैं इट हैपेंस। गणेश चतुर्थी ये वो दिन है जब बप्पा का जन्म हुआ था। जी हाँ, गणेश जी को इस दुनिया में लाने के लिए पार्वती माँ ने जब अपने महल से गणेश जी को बनाया तो बप्पा प्रकट हुए, है ना, और उनका जन्म हुआ। और शंकर जी ने भी इनफैक्ट उनको देखा नहीं था, तभी उन्होंने उनकी गर्दन को काट दिया था। भाई उन्हें क्या पता, वो तो तपस्या कर रहे थे कि उनका बेटा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये फेस्टिवल जो है गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल, ये इंडिया में बेसिकली 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। जी हाँ, 10 डेज का ये फेस्टिवल है। और 10 दिन जो है, जिन घरों में पूरे 10 दिनों के लिए बप्पा पधारते हैं, यार उन घरों का तो क्या कहें, रौनक ही देखने लायक होती है, है ना। तो चलिए बप्पा के इस बात का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको आगे लेकर चलते हैं अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड हमारे साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 FM।

0: जी हाँ, गणपति बप्पा को इस वक्त आप सताक्षी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो प्रसवानी पर आज विनायक चतुर्थी पर। हम आपके साथ हैं ठापंस में और गणपति बप्पा 10 दिनों के लिए यूं तो लोगों के घरों में आते हैं, आज से पूरे 10 दिन रहेंगे। इस दिन होता क्या है? बेसिकली लोग जो हैं वो मार्केट जाते हैं, गणेश जी को घर लेकर आते हैं। अब आप कहेंगे कि गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा पर तो वो घर आते ही हैं दिवाली पर, लेकिन नहीं, दिवाली पर जो गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा होती है वो जो प्रतिमाएं या मूर्तियां आपके घर आती हैं वो अगली दिवाली को सफाई के बाद, पूजा के बाद चेंज होती हैं। गणेश जी की ये जो प्रतिमा आप घर लेकर आते हैं ना, इसको आपको विसर्जित करना ही होता है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन आपको गणेश जी अगर घर में रखने हैं एक पीस के रूप में, शो पीस के रूप में, अपने मंदिर में या किसी को गिफ्ट देने के लिए, तो गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर नहीं आते हैं। गणपति बाप्पा को अपने घर गणेश चतुर्थी के दिन लेकर आने का मतलब होता है कि वो आपके घरों में विराजे हैं और 10 दिन बाद या 10 दिन से पहले जैसे भी आपकी क्षमता हो उन्हें आपको विसर्जित करना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये लॉजिक जो है ये बहुत याद रखने की जरूरत है। और भी बातें आपके साथ बांटूंगी, लेकिन अभी आगे एक अगले ट्रैक के साथ सुनिए मेरे साथ इट हैपेंस और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: गणपति बाप्पा।

longer, the longer that I live.

गानों की हैट्रिक आप मेरे साथ सुन रहे हैं रेडियो भूला मस्ती पर, और गानों की हैट्रिक में मेरा जो आपके साथ साथ है ये आगे जारी रहेगा, लेकिन अभी गणपति बप्पा के एक अगले गीत के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं।

पापा मोरिया। रेडियो बुला बस्ती पर गानों की हैट्रिक में आइए, आज का आखिरी ट्रैक सुनते हैं गानों की हैट्रिक को, और इट हैपेंस में हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि बहुत सारी बातें और गाने जो हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। स्टे ट्यून्ड, रेडियो बृसवानी 107.01।

गुड मॉर्निंग सुप्रभात एक बार फिर से उन्हें जिन्होंने अभी अभी में ज्वाइन किया है। आज रेडियो ब्रसवानी पर हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं मिलकर गणेश चतुर्थी। सो इंडिया में ये फेस्टिवल जो है ये बेसिकली शुरुआत हुई थी इसकी महाराष्ट्र से, मुंबई और महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल जो है, पुणे मुंबई महाराष्ट्र उस साइड में ये फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बप्पा के हजारों भक्त हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, चीजें सामने आई, तो लोग भी इसके बारे में ज्यादा जानने लगे और अब इंडिया में जो फेस्टिवल एक जगह का होता था वो कहाँ एक जगह का रह गया है। चाहे दुर्गा पूजा हो जो कि बंगाल का फेस्टिवल है, चाहे गणपति हो जो कि महाराष्ट्र का है, और चाहे छठ का फेस्टिवल हो जो कि बिहार का है, सभी फेस्टिवल्स जो है पूरे भारत में अच्छे से सेलिब्रेट किया।

किए जाते हैं। और ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जो लोग जाकर बस रहे हैं वो अपने फेस्टिवल्स को, अपने कल्चर को अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। हम बात करते हैं ना कि रूट्स कभी नहीं छोड़ने चाहिए, तो उनके रूट्स बहुत ही खूबसूरती से जो है वो इन फेस्टिवल्स के साथ जुड़े हुए हैं। आइए इसी बात पर, इसी खूबसूरती पर एक अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी पर।